अजय मिश्रा का गायन राग भूपेश्वरी में। सारंगी में साथ दे रहे हैं गुलाम मोहम्मद और तबले पर संगत है विश्वजीत देव की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कार्यक्रम स्वररंजनी में अभी आप सुन रहे थे अजय मिश्रा का गायन राग भूपेश्वरी में। सारंगी पर साथ दे रहे थे गुलाम मोहम्मद और तबले पर संगत थी विश्वजीत देव की। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, "Government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately."
2: I know that the paper leak is not a ordinary issue. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
3: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of APEC's body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Meanwhile, Prime Minister Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear the cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in the examination paper leaks. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Jhandewalan, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jorbagh, and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The centre has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Joshi, who is presently Secretary, Higher Education in Ministry of Education, has been appointed as the Secretary, Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary, Higher Education. T.K. Anil Kumar will be the Secretary, School Education and Literacy. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 6:10 और पूरे 20 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, इसी शब्द के साथ जिसे सुरेंद्र कौर और अजीत कौर ने अपनी आवाज़ से सजाया था, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 और आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास प्रतिदिन अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके व उनसे समाधान पाकर लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते थे। एक व्यापारी अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता था। उसका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा था। वह अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता था।

ईश्वर में भी उसकी अटूट आस्था थी, किंतु उसे अपने व्यस्त जीवन में आराधना का समय नहीं मिल पाता था। वह अपनी इसी समस्या को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। स्वामी रामकृष्ण बोले, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पर पहले तुम मुझे

प्रश्न सुनकर व्यापारी बोला, नहीं स्वामी जी, मैंने तो किसी ग्रामीण स्त्री को ऐसा करते आज तक नहीं देखा। अरे मुझे अपने व्यापार से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ देखूं। इस पर स्वामी जी बोले, चूड़ा बनाने वाली ग्रामीण स्त्री एक हाथ से चूड़ा पलटती जाती है तथा दूसरे हाथ से बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिलाती रहती है। उस दौरान यदि कोई पड़ोसन या अन्य व्यक्ति उसके पास आता है तब वह उनसे बातें भी करती है, ग्राहक आने पर उनसे हिसाब भी करती है, किंतु इन सब के बीच उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इन सब कामों के बीच उसका ध्यान ओखली और मूसल पर लगा रहता है। वह भली भांति जानती है कि यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई तो मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ टूट जाएगा। उस ग्रामीण स्त्री की तरह ही हमें अपने सांसारिक कार्यों के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसके लिए अलग से समय नहीं निकाल पाने का पछतावा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी के इस उदाहरण से व्यापारी भली भांति समझ गया कि व्यस्त रहते हुए भी ईश्वर की आराधना की जा सकती है। तभी स्वामी जी बोले, पुत्र एक बात और याद रखना कि कार्य और व्यापार में ईमानदारी बरतना, मन लगाकर काम करना भी ईश्वर की आराधना के ही बराबर है। व्यापारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और उन्हें प्रणाम कर वापिस चला गया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आपने सुना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस बालकांड भाग 126।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर

रही हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ ना जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त कर दिया। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और

0: लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। TK अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव बनाए गए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, Government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately. The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts.
2: मैंने fast-track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. He said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said that the court of Officer Anu Grover Baliga

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 7:10 और पूरे 20 सेकंड। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुमित कुमार द्वारा गाए भजनों का। सहयोगी कलाकार रहेंगे सितार पर अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर प्रदीप्ता महाराणा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना सुमित कुमार द्वारा गाए भजन। सितार पर थे अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर प्रदीप्ता महाराणा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

वेकअप कर लीजिए, यानी कि जाग जाइए, क्योंकि आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आरती को और आपके लिए लेकर कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें हम सुनाते हैं आपको खूबसूरत से आपकी पसंद के गाने, करते हैं ढेर सारी बातें और साथ ही सुनाती हूँ मैं आपको एक चुटकी वाली कहानी। जी हाँ, आज भी आपके लिए खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ, वो भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले करते हैं दिन की शुरुआत। चलिए इस खूबसूरत गीत के साथ जो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है।

दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और उसके लिए आप कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आके आपको या तो टोक देता है या आपके काम में कोई कमी निकाल देता है, या फिर वो ये समझाने बैठ जाता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुमको वो करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, ज्ञान देने वाले आपके राह में बहुत सारे लोग आते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि आपको क्या करना है, क्योंकि उन ज्ञान देने वालों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं। ये आपको समझना है और आज की जो ये कहानी है ये उसी से जुड़ी हुई है। इस कहानी को भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप सब स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं हूँ आरती गौड़, आपके लिए कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और चलिए एक और खूबसूरत सा नगमा हो जाए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आज की कहानी आपको क्या सिखाने वाली है।

दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। नाम है चित्रकार और दर्पण। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक युवा चित्रकार अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर जाके खड़ा हो गया और उसने पता है नीचे क्या लिखा? उसने लिखा कि अगर इस पेंटिंग में कोई कमी दिखे तो यहाँ पर जहाँ भी आपको कमी दिखाई दे रही है वहाँ जाके एक लाल निशान बना दीजिए। शाम को वो बड़ी खुशी खुशी गया कि लोगों ने बताया होगा उसकी परेशानी को, लेकिन जब वो वहां गया तो उसने देखा कि पूरी पेंटिंग जो थी वो लाल निशानों से भरी हुई थी। वो बहुत दुखी हुआ कि इतनी कमियां हैं मुझ में, मैं तो सोचता था कि मैंने बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाई है। और दुखी होने के बाद वो पहुंचा अपने गुरु के पास दुखी होकर और सब कुछ बताया। गुरुजी ने मुस्कुराया और कहा कि एक काम करो, फिर से इस पेंटिंग को बनाओ, लेकिन इस बार उसी चौराहे पर जाकर इस पेंटिंग के नीचे एक बोर्ड रखना और उस पर लिखना कि जहाँ पर भी आपको कमी दिख रही है ना, उसे सुधार दीजिएगा प्लीज। और ब्रश और रंग, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, वो उस पेंटिंग जो जहाँ पर आप रखोगे ना, वहाँ पर रख देना। चित्रकार ने गुरुजी की बात मानी और ऐसा ही किया। लेकिन शाम को जब वो पहुंचा तो वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसको सुनने के बाद आपको भी बिल्कुल शॉक लग जाएगा। क्या देखा उसने, ये बताऊंगी इस गीत के बाद।

तो दोस्तों, मैं सुना रही थी आपको एक युवा चित्रकार की कहानी, जिसने एक पेंटिंग को चौराहे पे रखा और अपनी कमियां बताने को कहा, तो लोगों ने उसमें बेहतरीन कमियां बताई, यानी सिर्फ कमियां ही बताई। उसके गुरु ने कहा कि इस पेंटिंग को आप फिर से बनाओ और फिर से वहीं रख कर आओ, लेकिन ब्रश और पेस्ट जितने भी कलर हैं वो सब कुछ वहाँ पे रख देना, और साथ में आप लोगों से ये कहना कि अभी आपने कमियां बताई थी, अब उन कमियों को आप सुधारिए। चित्रकार ने तो ऐसा ही किया, लेकिन जब वो शाम को वहाँ पहुँचा तो देखा कि पेंटिंग जैसी की उसने रखी थी उसको वैसी ही मिली। पता है क्यों? क्योंकि किसी ने उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, लोग तो बड़ी कमियां देख रहे थे। हकीकत भी यही है दोस्तों, क्योंकि इसी छोटी सी बात में बहुत बड़ी सीख भी छुपी है। कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें सुधारना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो लोग भी आपकी तरक्की में सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं ना, उनकी बातों को इतना दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत रंग में खुद भरिए, और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कामयाब नहीं होते हैं तब लोग आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तब लोग आपके साथ आते हैं। लोगों की यही फितरत है, और उनकी फितरत में आपको शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी है अपने आप को निखारने की, अपने आप को संपूर्ण करने की।

हाँ दोस्तों, आप हमेशा जब कमियां देखेंगे तो आप कभी भी निखर नहीं पाएंगे। इसीलिए दूसरे क्या करते हैं उस चीज को छोड़िए, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि हर इंसान में कमियां हैं तो खूबियां भी हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि एक कमल के फूल को देखकर कितनी खुशी होती है, लेकिन वो खिलता कहाँ पर है? वो खिलता है कीचड़ में। अगर हम उस कीचड़ को देखेंगे तो कमल कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से गुलाब का फूल, जब प्यार मोहब्बत की बात हो, दोस्ती की बात हो, या कहीं भी आपको किसी को खुश करना होता है, तो आप फूल गुलाब का पेश करते हैं, लेकिन वो फूल जो होता है वो कहाँ खिलता है? कांटों के बीच में। यानी कि वो भी कमियों से जुदा नहीं है। इसके अलावा अगर आप चांद को देखेंगे तो चांद से खूबसूरत तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं वाह क्या चांद सा चेहरा है, लेकिन चांद में भी तो दाग है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी खूबसूरती को देखते हैं या उसके दाग को। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किसी की कमियों से ज्यादा उसकी खूबियों पे ध्यान देना है, और तभी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। और अपने आप में भी ये बात याद रखनी है कि आपसे अच्छा कोई नहीं।

0: तो दोस्तों, आप सबको ये कार्यक्रम आई होप पसंद आया होगा। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनी जिंदगी में रंग भरते रहिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित

0: करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
6: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
7: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को

0: आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
5: The Prime Minister said that over the past two and a

0: 9.21 lakh people are affected by the floods in 11 districts across the state. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, began in Glasgow, Scotland, with a spectacular and colourful opening ceremony. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. The Indian contingent, led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain, marched with athletes waving miniature tricolours. The contingent received a warm welcome from the Glasgow crowd as India's athletes celebrated the start of their campaign. India opened their medal tally at the Commonwealth Games before the opening ceremony as the Olympic medalist boxer Lovlina moved straight into the women's 75-kilogram semi-finals after receiving a bye. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Pramod. PM promises new law to tackle paper leaks. Cabinet meeting today, headlines the Hindustan Times. The Pioneer headlines, PM announces fast-track courts in paper leak cases. While the Hindu headlines, PM reaches out to students. Sonam Wangchuk ends fast. The Indian Express headlines, PM steps in. Fast-track court to punish exam paper leak guilty. Tough new law on the way. All papers have on their front page that amid the ongoing protests over NEET UG paper leak issue, the government names new secretaries for higher and school education departments. And finally, justice was served in a murder case in Mohali thanks to a pet dog. The Times of India in a story says the dog would reportedly go to a spot and sit down, alerting the cops who dug up and found the victim's body. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign three agreements in the fields of science and technology, education and sports. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौलत मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने की खातिर मुतालिका महकमों को फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के लिए एक तजवीज़ तैयार करने की हिदायत दी थी और इन महकमों ने लगातार काम किया और कल रात देर गए उन्हें इसका मुसव्वदा पेश कर दिया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने और सख्त सजा की गुंजाइश शामिल है और इस पर आज होने वाली काबीना की मीटिंग में गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काबीना साथियों की तजवीज़ें शामिल करने के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि पीर के रोज़ पार्लियामेंट इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होने के साथ ही सरकार मस्कूरा बिल को ऐवान में जल्द से जल्द मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करेगी।
3: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा

0: के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेपर लीक होने के वाक़े के बाद से गुज़श्ता 2.5 महीने के दौरान कई इकदामात किए गए हैं। कसूरवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल में बंद हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना था कि तलबा का तालीमी साल ज़ाय ना हो और इसीलिए बिला ताखीर इम्तहानात कराना ज़रूरी था।
0: मैं जानता हूँ कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अख्तियार करने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट 2024 के तहत केसों की समाअत के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। इस इकदाम का मकसद इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों से मुतालिक मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: नई तश्कील दी गई ये फास्ट ट्रैक अदालत जुडिशल अफसर अन्नू ग्रोवर बालिगा की सरबराही में राउस एवेन्यू कोर्ट्स में काम करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये अदालत इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के एक्ट के तहत दर्ज किए गए केसों और दीगर मुतालिका मामलात की समाअत करेगी। मस्कुरा इकदाम का मकसद इम्तहानात में नामुनासिब तौर तरीकों के इस्तेमाल से वाबस्ता मामलात को तेजी के साथ निपटाना है। इम्तहान के पर्चे लीक होने के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तेजी के साथ सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के मरकज के फैसले के बारे में वजीर आजम के ऐलान के चंद घंटों के अंदर ही ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 रोज के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता पार्लियामेंट के 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे या भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए खतों पर दस्तखत कर चुके थे। जनाब वांगचुक ने कहा कि मुख्तलिफ सूरतेहाल पर तवील बातचीत के बाद ऐसा हुआ है। उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह का तशद्दुद न होने देने के लिए हर किसी से बहुत मुस्तैद रहने पर जोर दिया। जनाब वांगचुक ने निज़ाम तालीम में इस्लाहात और पेपर लीक के सिलसिले में जवाबदेही तय करने के मुतालबात करते हुए पिछले महीने की 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पाकिस्तान से काम करने वाले उन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है जो एक मुनज्जम तरीके से गलत जानकारी फैलाने की मुहिम में मुलव्वस थे। दिल्ली पुलिस के DCP सुमित झा ने बताया कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स तलबा और नौजवानों को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठे दावे फैलाने में मुलव्वस थे। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी भी तरह की जानकारी पर भरोसा करने और उसे शेयर करने से पहले जानकारी की तस्दीक कर लें।
3: हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए।
1: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से मजीद हिदायत जारी होने तक बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने अलबत्ता ये भी कहा है कि राजीव चौक

0: हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। मरकज ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में सेक्रेटरियों की तकरीरी की है। विनीत जोशी, जो इस वक्त तालीम की वजारत में आला तालीम के सेक्रेटरी हैं, उन्हें पंचायती राज की वजारत में सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। नरेश पाल गंगवार आला तालीम के नए सेक्रेटरी होंगे। टी के अनिल कुमार स्कूली तालीम और खानदगी के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। केशव चंद्र कानून की वजारत, जबकि चंद्रभूषण कुमार मेहनत और रोजगार की वजारत में सेक्रेटरी होंगे। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अंदरून मुल्क वसाइल से 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO के गैस टर्बाइन तहकीक ई इदारे ने इसे तैयार किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि DRDO के डिज़ाइन पर मबनी इस तरह के कॉम्प्लेक्स निज़ाम की दस्तियाबी से मुल्क की दिफाई सनत की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियत की अक्कासी होती है। भारत की साइंसी और सनती बरादरी के दरमियान करीबी साझेदारी और कई बरसों की इंजीनियरिंग और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के नतीजे में ये कामयाबी हासिल हुई है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने तवील दूरी के ज़मीन से फिजा में वार करने वाले मिज़ाइल कुशा की पहली कामयाब आजमाइश की है। ये तजुर्बा ओडिशा के साहिल के नज़दीक APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किया गया। वजारत दिफा ने कहा है कि ये पहली आजमाइश बुलंदी पर तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक हदफ को निशाना बनाकर कामयाबी के साथ अंजाम दी गई। वजारत ने कहा है कि कुशा मिज़ाइल निज़ाम लड़ाका जेट, हवाई जहाज़ों, मिज़ाइलों, ड्रोन और दुश्मन के बड़े हवाई जहाज समेत फिजा में मुख्तलिफ तरह के खतरात को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO और दीगर मुतालिका इदारों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह कामयाबी भारत की दिफाई तहकीक और तरक्की में एक अहम संग मील है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में इश्तराक की खातिर 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और उनके रोमानिया के हमनसब निकोसर डैन के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रेस बयान में सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी ज्यादा मकासद, मुस्तहकम इश्तराक और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरक नज़रिए के साथ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके हमनसब ने एक बामानी और सूदमंद तबादला ख्याल किया और हालिया बरसों में हुई पेशरफ का जायज़ा लिया गया। सदर मुर्मू ने कहा कि दोनों ममालिक ने अपनी मुतल्लिका तरजीहात से मुताबिकत रखते हुए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है।
2: हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के उद्योग जगत के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। हमने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने आइंदा 3 बरस में बाहमी तिजारत को दुगुना करने का हदफ रखा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती मुहिदा सनतों और हुनरमंद पेशावर अफराद के लिए बेशुमार इम्कान पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया ने मैनुफैक्चरिंग, अद्वियात, सेहत की देखभाल, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, ज़रई पैदावार, खाद, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रोमानिया के बुखारेस्ट से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ओडिशा के पवित्र साहिली शहर पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता बहुधा यात्रा का अहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडिचा मंदिर में 1 हफ्ते के क्याम के बाद वापसी का सफर करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर में वापस आएंगे। इस तरह सालाना यात्रा इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 48 घंटों में गुजरात में मुसलसल मूसलाधार बारिश से अहमदाबाद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ समेत वस्ती और जनूबी खित्तों के मुख्तलिफ अजला में शदीद तौर पर पानी जमा हो जाए और अचानक सैलाब की सूरतहाल पैदा हो।

23वें दौरत मुश्तरका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया है। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचमबरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की क्यादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए ओवीओ हाइड्रो अरीना में दाखिल हुईं।

0: के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने पेपर लीक मामले में वज़ीर आज़म मोदी के ज़रिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म के हवाले से सुर्खी लगाई है, पेपर लीक के मुलजमान को जल्द सख्त सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी। अखबार ने मरकजी वजारत दाखिला के इस बयान को नुमाया किया है कि वो सैलाब से मुतासर रियासतों और मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाकों को ज़रूरी इमदाद फ्राहम कर रही है। अखबार इनकलाब लिखता है, आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 41 हो गई, 6 लाख अफराद मुतासर। अखबार प्रताप ने हुकूमत की इस वजाहत को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि E20 पेट्रोल महफूज है, इंजन पर मनफी असरात का कोई साइंसी सबूत नहीं।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए नए कानून का वादा किया है। इस मामले के सिलसिले में आज की काबीना मीटिंग में और ज्यादा सख्त इकदामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के तनाजुर में दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक केसों के सिलसिले में खसूसी फास्ट ट्रैक अदालत कायम की है। सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वजीरों JP नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट जुमरे का पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन तैयार किया है। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलों के शोबों में 3 समझौतों पर दस्तखत किए हैं और 23वें दौरे मुश्तरका खेल स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शानदार रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरी 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे भीमप्पा भजनंतरी तथा अल एहसान रशीदी द्वारा गायन राग नटभैरव। साथी कलाकार रहेंगे सारंगी पर नफीस अहमद और तबले पर इरफान हुसैन खान। आइए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आपने सुना भीमप्पा भजनंतरी और अल एहसान रशीदी द्वारा गायन राग था नट भैरव। साथी कलाकार थे सारंगी पर नफीस अहमद और तबले पर इरफान हुसैन खान। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर विचार, आलेख एवं स्वर अभय प्रताप।
1: सत्य और अहिंसा गांधी जी के संपूर्ण जीवन और दर्शन का आधार है। उनका धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है।

साकार करने, उसे प्राप्त करने और उसे स्थापित करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। वे सत्य का राज्य चाहते थे। उन्होंने कहा है, सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजकारण में नहीं चलता, तो फिर वह कहाँ चलता है? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी कीमत की चीज नहीं है। जीवन में उसका उपयोग ही क्या रहा? मैं तो जीवन के हर एक व्यवहार में उसके उपयोग का नित्य नया दर्शन पाता हूँ। उन्होंने हमेशा तथ्यात्मक सच के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ और नैतिक मूल्यों को सत्य माना। उनके लिए सत्य का उद्देश्य अपराधी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना है। सत्य पर आधारित सत्याग्रह पूरी दुनिया को महात्मा गांधी की अनोखी देन है। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सत्य की शक्ति पर बल देने वाले विभिन्न सत्याग्रहों का आयोजन किया। इसके पहले वे दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे कई प्रयोग कर चुके थे। सत्याग्रह, जिसमें सत्य का अर्थ सत्य और आग्रह का अर्थ दृढ़ता है, सत्य के मार्ग पर चलने का संकेत देता है। वह सत्य का प्रदर्शन है जो प्रतिशोध नहीं चाहता, उत्पीड़क की अंतरात्मा को जगाकर उसे सत्य का दर्शन कराता है। यह दुर्बलों का हथियार नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो केवल बलवानों के पास होती है। इसमें न तो घृणा का भाव है और न ही विनाश का। यह मानता है कि उत्पीड़क शत्रु नहीं है, बल्कि केवल सत्य से विमुख है और उसे सत्य जानने के लिए राजी किया जा सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक हानि न पहुंचाना आदि। गांधी जी कहते हैं, अपने सकारात्मक और व्यापक अर्थ में अहिंसा प्रेम और करुणा की सक्रिय शक्ति है। यह असीम प्रेम और परोपकार को दर्शाता है। इसमें बैर भाव का त्याग है। अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। अतः सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं, जो हमें प्रेम करता है उससे भी हम प्रेम करें, यह अहिंसा नहीं। अहिंसा तो तब है जब अपने विरोधी शत्रु या अपने से विद्वेष रखने वाले को भी प्रेम करें। अहिंसा में दीनता, भीरुता बिल्कुल न हो, डर कर भागना भी नहीं होना चाहिए। अहिंसा में दृढ़ता, वीरता तथा निश्चलता होनी चाहिए। अहिंसा कायर का कवच नहीं है, बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा शांति का अमोघ अस्त्र है। सत्य और अहिंसा के मेल से आप संसार को अपने चरणों में ला सकते हैं। गांधी जी मानते हैं कि सत्य उन्हें स्वाभाविक रूप से मिला, लेकिन अहिंसा को उन्होंने एक संघर्ष के बाद पाया है। अहिंसा का मतलब त्याग भी है। अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की नहीं। यही कारण है दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। निजी जीवन में अहिंसा और बाहरी जीवन में हिंसा, ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। उनका जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा के पालन का आग्रह है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र की परिधि से निकालकर इसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सभी प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करने का शस्त्र बनाया। इसे सार्वजनिक और सार्वभौम बनाया। सिर्फ राज व्यवस्था ही नहीं, संपूर्ण विश्व व्यवस्था को अहिंसा आधारित बनाने की उनकी कल्पना थी। वे कहते हैं, अहिंसा अगर व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है, वह करोड़ों की है। हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं हैं, वह समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति हो सकती है। अभी हमने यह सिद्ध नहीं किया है, लेकिन यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है। मेरा तो यही स्वप्न है, इसी को मैंने अपना कर्तव्य माना है। चाहे सारा जगत मुझे छोड़ दे तो भी मैं इसे

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाजर है हरजीत कौर। अज असी अपने श्रोतियां नूं एक कहानी सुनवावांगे जित हार। कहानीकार होणगे डॉक्टर गुरदीप कौर ते फिल्मी गीतां दा आनंद माणांगे। पर अज ना थोड़ी जी गल पहला सादगी बारे करते हाँ। सादगी मतलब है सादापन, यानी दिखावे तो दूर रहना, यह मनुख का एक गुण है। सादगी नाल व्यक्तित्व की खूबसूरती वधदी है ते मानसिक तौर पर शांति भी मिलती है। क्या जाता है ना, बंदा बड़ा सादा रहता है, फलां औरत सादी जाइए, इस सादे रहन का मतलब छोटा हो जाना नहीं है, बल्कि सादा जीवन ते उच्चे विचार शख्सियत नूं निखारते ने, तुहानूं भीड़ तों वखरा विखाउंदे ने। सादगी होना अपने आप च एक क्वालिटी है। दरअसल सादगी दे वख वख पख ने, जिवें जीवन शैली च सादगी का होना, इसका मतलब है अपनियां लोड़ां नूं सीमित रखना, यानी गैर जरूरी खर्चे तो बचना है, दुनियावी इच्छावां नूं घट करके कुदरत दे नेड़े रहना, सादा खाना सादे कपड़े। दूजा है विचारां ते व्यवहार च सादगी। जिहड़े मनुख सादी जिंदगी जिउंदे ने उहनां दे विचार शीशे वांगू साफ हुंदे ने, उहनां दे व्यवहार च चलाकी वलछल नहीं हुंदे, उह सारिआं नाल बड़े सहज तरीके पेश आउंदे ने। कई लेखक तुसीं वेखे होणगे जिहड़े बड़ी सौखी भाषा च कविता कहानी लेख लिखते ने, अजिही भाषा जां शैली दी वरतों करते ने जिहड़ी आम लोकां नूं सौखे ही समझ आ जावे। गूढ़ ते औखे शब्दां दी बजाए उह सादगी नाल अपनी गल कागज़ ते उतारदे ने। सादगी दा अपना एक महत्व है, जदों दिखावे ते भौतिक मुकाबले तों संसारक दौड़ तों दूर रहा जांदा है तां मन शांत रहिंदा है। सादगी च मनुख दा असल चरित्र उभर के आउंदा है। सादापण मनुख नूं अपने उत्ते अपनियां इच्छावां उत्ते काबू पाउणा सिखाउंदा है। वाकई जिहड़े लोकी सादगी च आ जांदे ने उह बहुत सुखी रहिंदे ने, उन्हां कोल संतोख धन आ जांदा है। पर इत्थे इक गल होर, सादा लिबास पा के मन च खोट रखण वाले लोकां दी घाट नहीं, पर असीं उस पासे नहीं जाणा, असीं सिर्फ सादगी बारे सकारात्मक सोच रखनी है। अखीर च सादगी दे उत्ते मैं एक शेर कहांगी, मन्निया कि सादगी दा दौर नहीं, पर सादगी तो चंगा कुछ होर नहीं। ते हुण असीं तुहानूं सुणवा रहे हां एक कहानी जित हार। कहानीकार ने डॉक्टर गुरदीप कौर।
1: ईशानी लंबे वरियां तों सरकारी क्वार्टरां विच रह रही नूं कदी अजिहा अनुभव नहीं होया जिस विचों हुण उसनूं गुजरना पै रहा सी। दूजी मंजिल दे घर विच दरम्याने जे साइज़ दी गैलरी विच

की तरह घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। ईशानी कदी चुपचाप सुनदी, कदी बोल पैंदी। ऐसी जगह अंडे देने और घर बनाने की इनको क्या सूझती है, ये कैसे पता करें? कबूतरां दी अजिही मर्जी अते वर्ताव प्रति ईशानी दी सोच बेनतीजा ही रही। मौसम दा कैलेंडर थोड़ा बदलिया। गैलरी विच कबूतरां वल्लों इधरों उधरों इक्को जी शकल सूरत दे आपस विच मिलदे जुलदे तीले अक्सर डिगदे पए।

मोहम्मद रफी पेश कर रहे सन गुड्डी फिल्म का गीत ते हुण तुहानू सुणवाउंदे हां हरभजन मान दा गाया गीत। गीतकार ने बाबू सिंह मान ते संगीतकार ने जयदेव कुमार ते फिल्म का नाम है असानू माण वतना दा।

माण वतना दा। हुणे तुसी इस फिल्म दा गीत सुन रहे सी। कलाकार सन हरभजन मान। लो हुण सुनो फिल्म चन परदेसी दा एक गीत। गीत दा संगीत तैयार कीता है सुरिंदर कोहली ने ते आवाज दिलराज कौर दी है।

गीत तुसी सुनिया गायिका सन दिलराज कौर ते ए गीत असी लिया सी फिल्म चन परदेसी तो। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म होंदा है। अगले प्रोग्राम च छेती ही मुलाकात होएगी। हुण हरजीत कौर तुहाडे तो इजाजत चाहुंदी है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, और आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस समाप्त करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है।

0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्दुरयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोरिन गिनरेनु से मुलाकात करेंगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से अरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Balega at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear the cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in the examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced the closure of 17 metro stations today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakhamba Road, Mandi House, Central Secretariat, ITO and others. However, the interchange facilities will continue to be available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The sacred coastal city of Puri in Odisha is all set to witness the world-famous Bahuda Yatra, the ceremonial return journey of Lord Jagannath, Lord Balbhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan from the Sri Gundicha Temple to the Sri Jagannath Temple today. India has reiterated its commitment to an open, inclusive, transparent and rules-based multilateral trading system. During the final session of India's 8th Trade Policy Review at the World Trade Organization WTO in Geneva, Commerce Secretary Rajesh Agarwal emphasized that WTO reform should remain development-oriented, preserve policy space for developing countries, strengthen the organization's credibility and deliver on existing mandates. Brent crude oil prices rose above $100 a barrel for the first time since May as tensions escalate in West Asia, concerns over global energy supplies. The 23rd Commonwealth Games began in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. The Indian contingent led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain marched with athletes waving miniature tricolours. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 10:10 हुए हैं अब वक्त है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का

आकाशवाणी के कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को आपकी बहन दुर्गेश का नमस्कार। उम्मीद है कि आपका दिन सुखद और उत्साह से भरा हुआ बीत रहा होगा। जीवन की भागदौड़ में बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो मन को सुकून दें, तो उनमें से ही एक है हमारा ये कार्यक्रम, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्नचित होता है। तो चलिए कार्यक्रम सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये गीत और अंतराल के बाद आपको गीत सुन के काफ़ी मज़ा आया होगा। और एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कहते हैं कि खुशियाँ जो होती हैं ना, छोटी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी छिपी होती हैं। सुबह की ताज़ी हवा हो गई, किसी अपने का हालचाल पूछ लेना, किसी पुराने दोस्त का अचानक से याद आ जाना, या फिर कोई अपना पसंदीदा गीत सुन लेना, ये सब हमारे दिन को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते आप बेहतर बनाने की इच्छा रखते हों। अब बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की ओर, जो हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी, बिमला अनेजा जी ने। और इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहीन, नाजिया ने हमें न्यू महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा हमारे पास गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी ने हमें ये संदेश भेजा है। और अगला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल जी ने हमें ये संदेश भेजा है। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला।

और राजेंद्र जी शाह का, इन्होंने हमें पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से ये संदेश हमें भेजा है। आपके संदेश हमारे पास बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अगला संदेश है प्रमोद कुमार दूधी पुष्पेंद्र कुमार राजकुमार जी ने गांव फ्रांसी हिसार से हमें ये संदेश भेजा है। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू जाजौरिया और गुड्डू जी ने संदेश भेजा है। इसके अलावा नारकोट छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी भी हमें संदेश भेज रही हैं। जी, आपके संदेशों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके संदेशों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। आप अपने संदेश हमें भेजते रहिए। उससे पहले आइए, आप ही की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये गीत आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत बिल्कुल पसंद आया होगा। क्या बात है ना कि संगीत की दुनिया में जो हर एक गीत होता है अपनी एक कहानी होती है उसकी। कोई गीत प्रेम की बात करता है, कोई उम्मीद की, कोई संघर्ष की, और कोई करता है मुस्कान की बात। और यही कारण है कि हर श्रोता अपने मन के अनुसार किसी ना किसी गीत से जुड़ ही जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ, जिसे हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी ने। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य लाड़ू कोयल, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का जी ने हमें शिवाजी कॉलोनी रोहतक से भेजा है ये संदेश। और अगला संदेश हमें मिला है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा और अलका मिठा जी का। इन्होंने लिखा है कि बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, गीत की फरमाइश की है, फिल्म है यारा दिलदारा। तो चलिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने गीतों के भी होते हैं जो हर बार खुलें तो कोई नया याद मुस्कुरा उठे। शुरू की इस महफिल में आपका दिल से मैं एक बार फिर स्वागत करती हूँ। हमारे पास हर दिन कई खत, संदेश और फ़ोन पहुँचते हैं जिनमें सिर्फ गीतों की फरमाइश नहीं होती बल्कि उनसे जुड़ी यादें, भावनाएं और अपनेपन की महक भी होती है। यहाँ कोई अपनी बचपन का गीत सुनना चाहता है, तो कोई अपने जीवन साथी के लिए, तो कोई दोस्तों की याद में कोई धुन चुनता है। इसी स्नेह भरे संदेशों को सुरों में पिरोकर हम लेकर आए हैं आपकी पसंद का एक खास सफ़र। तो चलिए बढ़ते हैं अपने खास सफ़र पर आपके संदेशों के साथ। से अगला संदेश हमें भेजा है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान जी ने। और अगला संदेश हमें आया है सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी जी, रोहिणी से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं डीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से भेज रहे हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी। अगला संदेश मिला है हमें उत्तम कुमार जी भगत का, श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, बोड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और कुट्टी भगत, और पाकुड़ झारखंड से हमें भेज रहे हैं श्वेता भगत, केसुतासु, अर्णव, सत्यम, आनंद और उत्तम कुमार भगत जी संदेश। इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। लिखते हैं, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं और बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। और अगला संदेश मिला है उत्तम नगर दिल्ली से पोतराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का। देखिए श्रोताओं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप बार बार अपने संदेश ना भेजें, क्योंकि आपके संदेश हमारे पास आते जाते हैं और हमें वही संदेश वापस से मिलते रहते हैं दोबारा से। तो जो लोग हमें संदेश भेजना चाहते हैं और जिनके संदेश छूट जाते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सोच लिया करें ताकि हम उनके संदेशों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। और अगला संदेश हमें भेजा है, ये संदेश हमें आया है दिलावर खान जी का, श्रोता रघुवीर नगर से हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी भी हमें संदेश भेजा है। लिखते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और मुस्कान ही सबसे बड़ी खुशी है। खुशी दिल की दौलत है, खुश रहना भी एक कला है। जहाँ प्रेम वहाँ खुशी, खुशी हर पल में छिपी है, हंसता चेहरा, खुशहाल जीवन और खुशी सबसे सुंदर एहसास है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि खुश रहना ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। तो चलिए इसी प्यारे से गीत को बनाने के लिए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

बड़े अच्छे लगते हैं। दोस्तों, यादों की खुशबू का कोई मौसम नहीं होता और कुछ गीत हमेशा दिल के करीब होते हैं। अगर आपका भी कोई पसंदीदा गीत है जिसे आपकी कोई मीठी सी याद जुड़ी है तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हो सकता है अगली प्रस्तुति उसी गीत के नाम हो। फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ। देखते हैं पैगाम कहाँ से आया और किस गीत ने इसमें जगह बनाई है। अगला पैगाम हमें मिला है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और फॉरेस्ट्री का वाइट फील्ड बेंगलुरु से। और इसके अलावा हमें अगला संदेश मिला है, ये संदेश हमें मिला है कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन और मयंक शर्मा जी का। अगला संदेश हमें भेज रहे हैं मोहाली पंजाब से बप्पल मल्होत्रा जी, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश के साथ उन्होंने ये संदेश हमें भेजा है। हंसते रहें आप सबके बीच, खेलते रहें आप फूलों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच। ये संदेश हमें भेजा है मुंबई से अन्नू बरजातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनारा जी ने। इसके अलावा अगला संदेश हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान छीपा, पूजा परिहार जी ने। उसके अलावा लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी जी भी हमें रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया जी भी हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है पंकज शर्मा जी का, इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है और किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश की है। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रतेश संघई और पूरा संघई परिवार भी हमें संदेश भेज रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशों का, लगातार आपके संदेश इतनी तेज़ी से हमें मिलते हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बाट बोट जी ने भी हमें किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश की है। इसके अलावा हमारे पास अगला संदेश जो आया है वो आया है गांव 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से। ये संदेश हमें भेजा है मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल जी ने। इन्होंने भी हमें गीत के साथ फरमाइश की है। और अगला संदेश कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी और सुशील योगी जी ने हमें भेजा है। बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी भी इनके साथ संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा अगला संदेश जो हमें मिला है वो मिला है नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से जी ने भी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश।

बहुत सुंदर गीत, और इसी गीत के साथ पढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ जो हमें भेजा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी बॉय हिमांश जी ने भेजा है। फिल्म पहचान का बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ गीत की फरमाइश की है। इसके अलावा अगला संदेश हमें मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रुचिता खुराना और केशव रिधान खुराना जी ने भी हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा हमारे पास अगला संदेश आया है सप्त रंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका दले जी ने पुनावले पुणे से हमें भेजा है संदेश। अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और विशाखा सोनवनी जी ने, इसके अलावा इन्होंने हमें किसी भी गीत में खुद को शामिल करने की फरमाइश की है। और स्वर्ण सिंह गिल, तलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरुलाल और अविराज जी ने भी हमें किसी भी गीत में शामिल करने की फरमाइश की है, गांव लोड़गढ़ ठाकुरा वाला से। अगला संदेश जो हमें मिला है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने हमें संदेश भेजा है, और हमारे पास अगला संदेश जो आया है वो आया है हमारे पास मैना लत, अनिल बुरांडे जी, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे जी का। इन्होंने हमें पांडर कवड़ा जिला यमतवाल महाराष्ट्र से ये संदेश हमें भेजा है। आपके संदेश इतनी तेज़ी से लगातार हमें मिलते जा रहे हैं कि बहुत सारे संदेश पीछे छूट जाते हैं। और इसी कड़ी में अगला जो संदेश हमें मिला है शिवाजी चौक कटनी से, अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा कार्यक्रम ये गीत सुन रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। और ये हमें इन्होंने तू मुझे जान से भी प्यारा गीत की फरमाइश की है, फिल्म का नाम है वारदात। चलिए कोशिश करेंगे हम आपके गीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। पढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ जो हमें भेजा है डोल राणा जी ने, डीबी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से। और अगला संदेश जो हमें भेजा है किशोर नगर अमरावती से, हीरा मन शेंडे, सिद्धार्थ।

कुणानी जी ने हमें ये संदेश भेजा है। चलिए, आपके संदेश का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि महफिल में रौनक तभी नज़र आती है जब हर धड़कन किसी धुन से जुड़ जाती है। आपने जो गीत हमें सौंपे हैं प्यार से, बस उन्हीं से तो ये सुबह संवर जाती है। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं अपने अगले संदेश की तरफ जिसे हमें भेजा है नबी हसन अब्बासी सोहनास अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, इनम यशफ और रसीद वारसी जी ने, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से। और ज़ुबैर अली खान, सबिया अंजुमन खान भी हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, संचित पायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख जी ने हमें भेजा है ये संदेश। इसके अलावा हमें ये संदेश मिला है, अगला संदेश जो हमें मिला है वो मिला है सोनाली जी का, आशा नारंग जी का और सुरेश नारंग जी का, सहारनपुर से ये संदेश हमें मिला है। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम और मरियम जैनब जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। किशोर नगर अमरावती से जी भी हीरा मंडे शिंदे भी हमें ये संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू सोना, मोना हनी, यश भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, आपके संदेश बार बार, एक एक संदेश कई बारी हमारे हमारे सामने आता है, और क्योंकि हम आपके संदेश लगातार पढ़ते जाते हैं और आपके लगातार संदेश बार बार दोहराते हैं, तो कृपया करके हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने संदेश एक बार भेजें जिससे कि औरों को भी मौका मिले इस कार्यक्रम में अपने संदेश शामिल करने का। अगले संदेश हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डेंगिया और नमन डेंगिया जी ने, पार डेंगिया जी ने। और इसके अलावा जो संदेश मिला है हमें, वो संदेश हमें मिला है कस्बा बलराम से। देखिए, ये संदेश हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से यही संदेश आया है। इसके अलावा हमारे पास आया है कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन जी ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हमें ये संदेश भेजा है। और इसके अलावा हमें जो संदेश मिला है वो मिला है जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो, विलिस ट्रैक डिकेस्ट्रो जी ने। ये संदेश हमें जनकपुरी सहारनपुर से हमें भेजा है इन्होंने ये संदेश। और इन्होंने अपना नाम, गांव उगला जिला अंबाला हरियाणा से ये संदेश भेजा है। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन कौर जी ने हमें ये संदेश भेजा है। दोस्तों, आपके संदेश हम अपने कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं गीत की तरफ और कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों के चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना वजन सामान्य करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुदुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगे और सेनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंदेनू से मुलाकात करेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहाइन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगा लहराते हुए अरेना में प्रवेश किया। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा।

मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले दो से तीन दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

इस समय 11:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम सुरमंजरी का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुनेंगे अजय मिश्रा का गाया राग गुजरी तोड़ी। आपके पास आपके साथ सारंगी पर होंगे गुलाम मोहम्मद, तबले पर होंगे बिस्वजीत देव।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमंजरी के कार्यक्रम में अजय मिश्रा का गाया राग गुजरी तोड़ी। संग सारंगी के साथ आपके सारंगी पर आपके साथ थे गुलाम मोहम्मद जी और तबले पर संगत दे रहे थे बिस्वजीत देव। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 12 बजने को हैं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में प्रसारित होंगे, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्टर कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
1: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75

भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75

आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल यानी एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी, और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और आज शुक्रवार है तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है बुजुर्गों को। जी हाँ, एक कदम बुजुर्गों की ओर। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। बुजुर्गों के अनुभव, संघर्ष और जीवन मूल्य नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। दादी नानी की कहानियां बच्चों को नैतिकता, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ती हैं। पारिवारिक व्यंजन जो दादी नानी के होते हैं ना, वो केवल भोजन नहीं होते बल्कि परिवार की संस्कृति और विरासत के वाहक होते हैं। और यही वरिष्ठ नागरिक हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो त्यौहार, रीति रिवाज और लोक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, मगर आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।

0: चले गई।
1: नादे और लता मंगेशकर के स्वरों में आपने ये गीत उजाला फिल्म से सुना। और मौसम की बात तो होगी और हम बात कर रहे हैं यादों की। यादें इंसान की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन के अनेक खूबसूरत पल स्मृतियों में बस जाते हैं। बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, पहली नौकरी, परिवार के साथ बिताए गए हर पल और पुराने दोस्तों की बातें हम सोचते हैं ना तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और ऐसा ही हमारे बुजुर्गों के साथ होता है। उनके पास ढेर सारी यादें होती हैं, वो यादें जो संजो रखी हैं उन्होंने अपने दिल में। ये यादें जीवन के उतार चढ़ाव से उबरने की ताकत देती हैं। और आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में पुरानी यादों को संजोना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों के अनुभव और उनकी स्मृतियाँ परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। आइए आज यादों के इसी आंगन में चलते हैं और सुनते हैं ऐसे गीत जो बीते दिनों की मधुर खुशबू को फिर से ताजा कर दें।

के दिनों की यादों को संजोना बेहतरीन अनुभव है कि आप वो सारी बातें याद रखिए जो बचपन में हुई थी। वो दिन भी क्या दिन थे ना। ये गीत हमने सुजाता फिल्म का लिया था, गीता दत्त और आशा भोंसले की आवाज़ में। अब माता पिता जो होते हैं वो परिवार की नींव होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग और संघर्ष करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें सबसे अधिक ज़रूरत सम्मान, अपनेपन और साथ की होती है। उनका अनुभव परिवार को सही दिशा देता है और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यदि हम रोज कुछ समय अपने घर के बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ बिताएं, उनकी बातें सुने, उनका सम्मान करें और जब नानी के यहाँ जाएं तो नाना नानी की बात सुने, बड़ों का सम्मान करें, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्योंकि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी

उससे जो सीख मिलती है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। बुजुर्गों ने समय के अनेक रंग देखे हैं, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने संघर्ष भी देखा है और सफलताएं भी देखी हैं। उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। यदि परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह को महत्व दिया जाए तो कई समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा। उनके जीवन की कहानियां प्रेरणा देती हैं और हमें धैर्य, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाती हैं, और हमें उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनुभव उनके पास हैं वो कहीं से लिए हुए नहीं हैं, वो आजमाए हुए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत और संघर्ष किया है ना, उसी से उन्हें वो अनुभव मिले हैं। और जो हम अपनी ज़िंदगी में प्यार बांट पाते हैं ना, सच मानिए वो प्यार हमें उन्हीं से मिला है, और उन्होंने जो प्यार दिया है वही तो हम आगे बांट पाते हैं।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म में भी आपने आशा भोसले को सुना। एक समय था जब जीवन में सादगी थी, खुशियाँ भरपूर थी, परिवार के साथ बैठकर भोजन का किया जाता था, मोहल्ले में अपनापन था, रिश्तों में आत्मीयता थी, मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन दिलों में प्यार बहुत था। चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, त्यौहार पूरे मोहल्ले के साथ मनाए जाते थे, हर खुशी साझा होती थी। बुजुर्ग आज भी उस दिनों को बड़े प्रेम से याद करते हैं क्योंकि ये जो यादें हैं ना, ये उनके मन को बहुत सुकून देती हैं। और दोस्ती और रिश्ते तो जीवन की सबसे सुंदर पूंजी होते हैं। समय बदल जाता है लेकिन सच्चे रिश्तों की मिठास

भी कम नहीं होती। बिताए हुए वो प्यारे पल हर वक्त यादों में ताजा रहते हैं। रिश्तों की गर्माहट जीवन को खुशहाल बनाती है। बुजुर्गों के लिए पुराने साथी और परिवार का साथ मानसिक और भावनात्मक संबल देता है। आज तकनीक के दौर में दिलों की दूरी कम करने की जरूरत है। आइए रिश्तों की इसी मिठास को याद करें वो लोरियां जो बचपन में हमने सुनी।

मन मंदिर फिल्म की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। देखिए, याद आ गया ना अपना बचपन कि मुन्ना जाएगा बाजार। हम भी बाजार जाया करते थे, सभी जाते हैं, दो पैसे का, चार पैसे का, जब जो पैसा चल रहा होता है उसका सामान लाया जाता है। और दादा

दादी नाना नानी परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनकी कहानियाँ, उनकी लोरियाँ जो होती हैं ना, जीवन में अनुभव, संस्कार और मनोरंजन का अनोखा संगम होती हैं। उनकी बातें बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और परिवार की परंपराओं से जोड़ती हैं। उनके साथ बिताया गया समय जो होता है, बच्चों के व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। आज के डिजिटल युग में भी उनकी कहानियों का महत्व कम नहीं हुआ है, ना ही उनकी लोरियों का महत्व कम हुआ है। और गुनगुनाकर जो माँ और दादी लोरियाँ सुनाती हैं ना, उसी से और उनके सर पर जो हाथ फेरते हैं, माँ और दादी जो हाथ फेरती है, बच्चों के सिर पर स्नेही आशीर्वाद होता है। वो उनके ही मार्गदर्शन से परिवार मजबूत बनता है। उन प्यारे रिश्तों को याद करते रहें और उनको संजोते रहें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर की एक देन है। और जो उम्र होती है वो कभी भी सपने देखने या खुश रहने की राह में बाधा नहीं होती, इसलिए हमेशा हमारे बुजुर्गों को खुश रहना ज़रूरी है। सकारात्मक सोच, अच्छा स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली इंसान को हर उम्र में ऊर्जावान बनाए रखती है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक योग करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, यात्राएं करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। उनका उत्साह युवाओं के लिए प्रेरणा है। जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। और इस उत्साह के साथ सुनते हैं ये गीत, तो जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है।

अवतार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। और एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक चलता फिरता इतिहास है, कितने लोग मानते हैं इस बात को? जी हाँ, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वास्तव में एक चलता फिरता इतिहास हैं। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे सीखा है, इसलिए उनके अनुभव हमें न केवल अतीत से परिचित कराते हैं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि इतिहास के जीवंत साक्षी होते हैं। उन्होंने समय के कई दौर और जीवन में हुए अनेक परिवर्तनों को नज़दीक से देखा है। उनके जीवन के अनुभव हमें उन घटनाओं, संघर्षों और मूल्यों से परिचित कराते हैं जिन्हें किताबों में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। उनके संस्मरण, उनकी जीवन कथाएं समाज की अमूल्य धरोहर हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी बातें बताते थे आज़ादी के दिनों की। बहुत सारी चीज़ें बताते थे कि 15 पैसे में ऐसा हो जाता था, 5 पैसे में ये होता था। अब पैसे, कौड़ी, ये सब चीज़ें तो बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जो पैसे और बाकी चीज़ें हैं जो पुराने इतिहास की हैं, समाज की हैं, वो बड़े बुज़ुर्गों से हमारे बच्चों

बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपने भविष्य को अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ आकार दे सकती है। इसीलिए अपने बुजुर्गों को रूठने ना दें, और रूठ लें तो मना लीजिए फौरन।

रहेगा। बुजुर्गों क्या घर के हर रिश्ते के साथ यही होना चाहिए, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, यानी हर रिश्ते को मनाना हमारी जिम्मेदारी है और मान भी जाना चाहिए। यानी हम रूठे हैं तो दूसरा अगर कोई मनाए ना फौरन मान जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संजो कर संभाल के रखना पड़ता है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयकर दिवस की। भारत में हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। करदाताओं के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मानित करने के लिए और कर भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए। और बड़े बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने में कैसे सहायता मिल सकती है वो हम आपको बताएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि करदाताओं की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी 70 वर्ष की आयु के आधार पर भी यही समय सीमा है। और धारा 80 TTB के तहत बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक की जमा पर मिलने वाले ब्याज में 50,000 रुपये तक की कटौती मिल सकती है 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को। धारा 194P के तहत विशेष छूट मिलेगी 75 वर्ष से जो अधिक हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, और जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है और आय का स्रोत केवल पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, उन्हें आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने बैंक में फॉर्म 12BBA जमा करना होगा, उसके बाद बैंक उनकी इनकम टैक्स योग्य आय की गणना करके TDS काट लेगा। और धारा 80 TTB, बुजुर्ग अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस और सहकारी बैंकों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। और पेंशन भोगी अपनी पेंशन आय से 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड कटौती का लाभ उठा सकते हैं। और बुजुर्ग माता पिता यदि हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा खर्चों पर धारा 80D के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। अब दस्तावेज क्या चाहिए हमारे बुजुर्गों को, अगर आईटीआर फाइल करनी है तो बैंक पासबुक ले लीजिए, 26AS फॉर्म ले लीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और ब्याज के प्रमाण पत्र का को निकाल लीजिए। कागज लेकर आप कहीं से भी आईटीआर भरवा सकते हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज से आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आमतौर पर ITR 1 यानी सहज फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये बहुत आसान है। आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पर जाकर उनके पैन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। और ये सब जानकारी वहाँ पर भी है जहाँ आप फॉर्म भरेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अंत में हम तो यही कहेंगे कि दादा और दादी का अनुभव, नाना और नानी का अनुभव, हमारे बुजुर्गों का अनुभव एक ऐसी अनमोल किताब है जिसमें ज़िंदगी जीने का असली सलीका, हर मुश्किल का समाधान छुपा होता है। और उनके दशकों पुराने अनुभव हमें न सिर्फ संस्कारी बनाते हैं बल्कि व्यवहारिक रूप से जीना भी सिखाते हैं।

लता मंगेशकर के आवाज में ये गीत फिल्म दुनियादारी से है और कार्यक्रम घर आगम का यही अंतिम गीत है और इस कार्यक्रम से मुझे यानी राधा को दें इजाज़त, लेकिन सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उनके साथ बैठिए, समय बिताइए और उनके संघर्षों और अनुभवों का लाभ उठाइए, यही हम आपसे कहेंगे।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर

0: जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया.
3: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the fifth consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed. Mr. Rijiju said it is the collective sentiment of all the members that there should be a meaningful discussion on the issue. The minister said in the cabinet meeting today, decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address this paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at 8 locations today across Delhi, Uttar Pradesh and Punjab in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. ED said the investigation arises from a CBI case relating to fraud involving approximately 450 crore rupees. Further investigation is underway. BJP National President Nitin Naveen has said the government stands firmly with the citizens affected due to heavy rainfall and flood situation in Gujarat. In a social media post, the BJP president stated today that the Bharatiya Janata Party stands firmly with the affected citizens in the spirit of service and dedication and is actively providing cooperation in the relief efforts. In Jammu and Kashmir, amid the continued closure of the Jammu-Srinagar National Highway due to heavy rainfall and landslides, the Northern Railway yesterday introduced a special train between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers. The special service helped evacuate over 600 passengers affected by disruption in road connectivity. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of the World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the championship. Five-time world champion Vishwanathan Anand has taken charge of the International Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. और अब समय हुआ है हमारे रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आदाब, सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म से में हम बात करेंगे 1983 में रिलीज हुई बेहतरीन और भावुक रिश्तों से बंधी फिल्म, जो न केवल इंसानी रिश्तों के उलझे तानों बानों को दिखाती है, बल्कि रिश्तों की जटिलताओं, मानवीय संवेदनाओं और क्षमा पर आधारित एक कालजयी कृति पर आधारित फिल्म है। जी हाँ, तो श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, जो है एक ही फिल्म से। जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि आज हम किस फिल्म की गलियारों से गुजरेंगे। तो करना क्या है, बस यही, सही जवाब के साथ हमें ईमेल आईडी कर सकते हैं, यानी कि मैसेज करके हमें आप अपना संदेश भेज सकते हैं, जो कि है हमारा ईमेल आईडी iprradiodelhi@gmail.com, iprradiodelhi@gmail.com। जो भी हमें सबसे पहले सही जवाब से रूबरू कराएगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब पाएगा। वैसे तो खिताब सभी पा चुके हैं, क्योंकि आप सभी हमें इतना बेहतरीन, बेहद प्यार से हमें अपने मैसेज भेजते हैं, तो हमारे लिए सभी फेवरेट हैं। लेकिन थोड़ा सा खेल तो बनता है ना, देखिए रहना है तो कुछ तो आपको कहना है ना, तो जल्दी से फ़ोन उठाएं और हमें अपने सही जवाब भेजें, क्योंकि आपके सही जवाब का हमें रहेगा इंतज़ार। और इंतज़ार की घड़ियों को थोड़ा सा और खूबसूरत पल बनाने के लिए सुनते हैं इसी फिल्म से जुड़े ये गीत, जिसे सुनकर हर किसी के बचपन याद आ जाता है और हर किसी का जो बचपन है ना, वो मुस्कुरा उठता है कुछ इस तरह से।

जी हाँ, ये गाना सुनकर किसको अपना अपना बचपन याद आ गया, मुझे तो आ गया और मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोताओं को भी आ गया होगा। और सही जवाब हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा है, हमारे सारे श्रोता जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। और सबसे पहले जिसने पहचाना है वो हैं हमारे अजीत भावस्कर जी, जो कि विरम गाँव गुजरात से हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब मिलता है। तो बिल्कुल हताश न होए, जो भी हमारे श्रोता हैं सारे ही हमारे लिए फेवरेट हैं। तो एक छोटा सा ये बहाना है, आपसे कुछ तो हमने कहलवाना है ना। तो हम आज बात कर रहे हैं 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम, जिसका निर्देशन शेखर कपूर जी ने किया था। और ये जो गाने की बात हम बात कर रहे थे अभी, लकड़ी की काटी, दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान बच्चों को बिल्कुल स्कूल के माहौल जैसा माहौल दिया गया। कहते हैं ना कि अगर वही माहौल दो तो उसी तरीके से एक्ट भी अच्छा हो जाता है और उसी में रंग जाते हैं सभी। तो इसी तरह से स्कूल का माहौल दिया गया, और ताकि उनकी हंसी और शरारतें बनावटी ना लगे। यही वजह है कि आज का ये जो गीत है ना, बच्चों का आज भी फेवरेट है और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो हम बता रहे हैं इस फिल्म के बारे में, और फिल्मों में से एक फिल्म ये, एक जो कहते हैं ना शेखर जी की जो निर्देशन की ये फिल्म है, तो उनकी ये जो निर्देशित फिल्म है वो एक फिल्म उन फिल्मों में से एक है। इसने उन्हें एक ऐसा खिताब दिया, संवेदनशील निर्देशक का। जी हाँ, उनकी जो पहचान बनी वो इसी फिल्म से बनी। कहा जाता है कि ये फिल्म अंग्रेजी उपन्यास मैन वुमेन एंड चाइल्ड, इस फिल्म से प्रेरित थी। इस फिल्म से में जो किरदार थे वो तो आप सभी जानते हैं, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जुगल हंसराज, उर्मिला मातोंडकर, आराधना एक बाल कलाकार के रूप में काम करा था, और सईद जाफरी जैसे कलाकारों ने अपना अभिनय देकर इसे और खास बना दिया। और आप हमें मैसेज कर रहे हैं, इससे भी आप हमारे इस कार्यक्रम को खास बना रहे हैं। और फिर हमें राजकुमार जी ने मैसेज किया है जिला हिसार से, और उसके बाद हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं पहले ये वाला नगमा।

वाह, ये आवाज़ भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज़ का इतना बेहतरीन गीत, और कहते हैं एक ही धुन लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। जी हाँ, पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उनकी फिल्म में, ये जो फिल्म है ना, इसमें वाद्य यंत्र बहुत ही सीमित थे, बहुत ही कम थे, लेकिन उनका जो संगीत है इतना हावी हुआ कि दिलों पर छा गया। और हम बता दें कि हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म डी के की है, जिसका रोल है नसरुद्दीन शाह ने निभाया और इंदु का रोल शबाना आज़मी ने निभाया। और उनका एक खुशहाल वैवाहिक जीवन से शुरू होती है कहानी। उनकी दो बेटियाँ पिंकी यानी उर्मिला मातोंडकर और मिनी यानी आराधना बाल कलाकार के रूप में काम किया। कहानी में तूफान तब आता है जब डी के को पता चलता है कि अतीत में एक रिश्ते से उनका एक बेटा भी है और जिसका नाम राहुल है। राहुल का किरदार निभाया बाल कलाकार जुगल हंसराज जी ने। और राहुल की माँ की मौत के बाद उसे डी के घर आना पड़ा। पति के धोखे से टूटी इंदु के लिए उस अनाथ बच्चे को अपनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिससे वो पूरे घर में भावात्मक कितना फीलिंग्स जो होती हैं वो उथल पुथल हो जाती हैं, सबके दिल टूट जाते हैं। कहा जाता है कि रिलीज के शुरुआती दिनों में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे, लेकिन जब किसी एक ने देखा और फिर उसने दूसरे को बताया, कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी के बाद, सिनेमा घर में भीड़ जुटने लगी और बाद में ये ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। हमारे पास मैसेज आया राजकुमार दादू जी का, उसके बाद हमारे पास अजीत भास्कर जिन्होंने सही जवाब दिया है आज हमें, सुदर्शन मुखी जी, अनीता सिमरन जी शांतिनगर से, और भूषण खेरा जी ने पंजाब से हमें मैसेज किया है, और इसी तरह से डूल राणा जी ने हमें मैसेज किया है, सुनील पाठक जी ने हमें मैसेज किया, कमल पाठक गायक मल्होत्रा अनारकली पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं, हीरामणि वर्मा भाटापारा से हमें मैसेज कर रहे हैं, आर कुमार जी वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार जी हमें मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सभी ने सभी सही जवाब दिया, बस सबसे पहले जिसने दिया बस वही एक खेल था हमारे साथ। नमस्कार। और हमें सुरेश जाटकर जी ने हमें मैसेज किया है, बेबी उर्मिला मातोंडकर, सुरेश जाधव, अनीता जाधव।

हाँ, ज़िंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, और ये गाना जो है ना दिल को छू जाता है। आज भी अगर कोई सुनता है तो उसे अपनी ज़िंदगी की वही पिछली उथल पुथल याद आ जाती है। वो सभी की ज़िंदगी में होती है, तो कभी भी परेशान ना होएं। और ऐसा लगता है ना कि गुलजार साहब ने ये गीत के जो बोल लिखे वो एक मात्र पात्र नहीं थे, बल्कि एक ज़िंदगी का एक सवाल है जो हमसे, हम अपने आप से, खुद से पूछ रहे हैं कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ नहीं जनाब, ये सभी के साथ होता है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, तो निराश और उदास कभी ना होए। कहते हैं ना, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। अब हम इस गीत के दो संस्करण रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि एक लता मंगेशकर की आवाज़ में और दूसरा अनूप घोषाल, जो कि अभी आपने सुना। दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में फिल्माए गए, इसलिए दोनों का भाव भी अलग है। जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज हम लेकर हाजिर हैं फिल्म मासूम। श्रोताओं, कहा जाता है कि इस फिल्म के गीत और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए पहले जावेद अख्तर साहब को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होने के कारण बाद में ये काम गुलजार साहब को सौंपा गया। गुलजार साहब ने अपने गीतों में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के रिश्तों को, एक कहते हैं ना रिश्तों की जो टूटन और जुड़ाव जो था ना, बेहद सरल भाषा में देकर उन गीतों को इतना बेहद भावुक बना दिया कि आज सुनते हैं तो आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ ही जाते हैं। बिट्टू गनेजा जी हमें, सुरेश गंगेजा और पूनम जी ने हमें मैसेज किया है, पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और निर्मला विशाल नावकर और उर्मिला मातोंड जुगल हंसराज ने, उन्होंने जवाब दिया है कि बाल कलाकार थे अजीत भास्कर जी ने, और नरेंद्र राग सुथर जो नमस्कार है ना जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नौहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार जी ने हमें मैसेज किया है, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से रोहित वशिष्ठ जी ने हमें मैसेज किया है, प्रेम सागर, सुशोभा लता, और नाभा जिला पटियाला पंजाब, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमोत कौर, और धर्मेंद्र शिपा जी, स्वर्ण सिंह जी, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, प्रकाश वर्मा जी, प्रिंस निखिल यशस्वी, और राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्होंने हमें, और भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसी तरीके से मैसेज करते रहिए। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबली रोड अकोला से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं ये अगला नगमा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा।

हमें मैसेज किया है दिलदार मेरी ज्योति जानवी दिशांत जी ने और संजय ढींगिया जी ने, नमन ढींगिया पा ढींगिया और भागवत वर्मा, शांति लीलावती विनीता, रुद्र और पिपरिया से कमलकांत, दीपा रिमझिम, मुकेश, श्रद्धा, राधे, दीपक, अंकु, अदिति और जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस, डिक्रेस तो, और इन्होंने हमें मैसेज किया और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत जी, इन्होंने मैसेज किया, मुकेश भाटा जी ने मैसेज किया है, लालगिरी जी ने हमें, गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। निसार अली जी ने भी हमें मैसेज किया है।

जी हाँ, मासूम उस वर्ष की सबसे बेहतरीन और संवेदनशील पारिवारिक फिल्मों में से एक थी, जिसे कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। तो श्रोताओं, समय की पाबंदी की वजह से रैना तवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म, उससे जुड़े अनसुने किस्सों सदाबहारों और यादगार फिल्म उससे जुड़े अनसुने किस्से और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून। एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: और अब समय हुआ है हमारे न्यूज़ सुनने का, तो अब सुनते हैं पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। नीट मुद्दे ते लगातार हंगामे

कारण लोकसभा सोमवार तक उठा दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक उठा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ते राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी नू नीट यूजी पेपर लीक तो बाद सुधारा नू लागू करन विच हुई प्रगति बारे वेरवे सहित हलफनामा दायर करन दा निर्देश दिता है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अज एक कथित बैंक धोखाधड़ी नाल जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले दे संबंध विच पंजाब दिल्ली ते उत्तर प्रदेश विच 8 थावां ते तलाशियां लईआं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर विच हो रहे दमन नू नजरअंदाज करन लई संयुक्त राष्ट्र प्रति निराशा प्रगट कीती है। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सैमीफाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद विच लगातार 5वें दिन हंगामा जारी रहन कारण लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। पहली बार उठाए जाने तो बाद जदों सभा ने दोपहर 12 बजे अपनी कार्रवाई मुड़ शुरू की तां संसदीय मामलों बारे मंत्री

प्रगट की थी। ते भारत दी अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप दे सेमी फाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद विच लगातार पंजवें दिन हंगामा जारी रहन कारण लोकसभा दी कारवाई सोमवार तक मुलतवी कर दित्ती गई है। पहली बार उठाए जाने तो बाद जदों सभा ने दोपहर 12 बजे अपनी कारवाई मुड़ शुरू की तां संसदीय मामलों बारे मंत्री

0: मुलतवी कर दिता गया। जदों लोकसभा ने सवेरे 11 बजे अपनी कारवाई शुरू की तां सदन ने करगिल जंग विच सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले भारतीय हथियारबंद फौजां दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 26 जुलाई नूं कारगिल विजय दिवस की 27वीं वरेगंढ़ है। उन्हें कहा कि यह दिन फौजियां दी अदुत्ती हिम्मत बहादुरी और सर्वोच्च कुर्बानी का प्रतीक है। श्री बिरला ने भी कहा कि कारगिल जंग दौरान भारतीय हथियारबंद फौजां दे बहादुर फौजियां ने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा लई मुश्किल पहाड़ी इलाकियां मुश्किल हालात और खराब मौसम का सामना करते हुए बेमिसाल हिम्मत और दृढ़ता का विखाला किया। उन्हें कहा कि पूरा देश इन अमर शहीदों का हमेशा कर्जदार रहेगा जिन्होंने मातभूमि की सेवा विच अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। शहीदां दी याद विच सदन विच मौन भी रख्या गया। नीट पेपर लीक मामले ते राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। जदों दोपहर 12 बजे पहली बार मुलतवी होने तो बाद सभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तां सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की पर विरोधी धिर ने सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफे की मांग करते हुए रौला रप्पा जारी रख्या। इस तों बाद सदन नूं दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। राज्यसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे शुरू होने ते भी सदन ने कारगिल जंग दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 की कारगिल जंग विच भारत की जित की याद दवांदा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सभा हथियारबंद बलों प्रति अपनी डूंगी शुक्रगुजारी प्रकट कर दी है। फौजियां दे सम्मान विच राज्यसभा विच भी मौन रख्या गया। इस तों बाद स्पीकर ने सिफरकाल शुरू करने की कोशिश की थी अते विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक अते इस मामले ते विद्यार्थियों दे विरोध दा मुद्दा उठाया। रौले रप्पे तों बाद सदन नूं दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कीता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने विभागों नूं पेपर लीक नाल निपटण लई फास्ट ट्रैक अदालतां लई तजवीज़ तैयार करने दे निर्देश दित्ते अते विभागों ने लगातार काम कीता ते कल देर रात उन्हां नूं खरड़ा सौंप दित्ता है। कल रात एक वीडियो संदेश विच श्री मोदी ने कहा कि इस खरड़े विच फास्ट ट्रैक अदालतां ते सख्त सजावां लई प्रबंध शामिल ने ते अज कैबिनेट विच इस ते चर्चा कीती जाएगी। उन्हां कहा कि कैबिनेट सहयोगियां दे सुझावां नूं शामिल करन तों बाद इस नूं अंतम रूप दित्ता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिवें कि सोमवार नूं संसद दा दूजा हफ्ता शुरू हो रहा है सरकार इस बिल नूं जल्द तों जल्द सदन वल्लों पास कराउण लई हर संभव कोशिश करेगी।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे

0: कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज़ को दबाए जाने को नज़रअंदाज करने पर अक़वामे मुत्तहिदा की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज़्ज़म तौर पर कुचलने का इल्ज़ाम आयद किया है। भारत के महकमाए मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आज बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने महकमों से कहा था कि वो पेपर लीक के वाक़यात से निमटने के लिए तेज़ रफ्तार अदालतें तश्कील देने के लिए एक तजवीज़ तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन महकमों ने अनथक काम किया और उन्हें कल देर रात इसका मुसव्वदा पेश कर दिया गया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में तेज़ी से काम करने वाली अदालतों और सख्त सज़ाओं की शिकें तश्कील दी गई हैं। इस मुसव्वदे पर आज काबीना बहस व मुबाहिसा करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे में काबीनी रुफ़क़ा की तजवीज़ शामिल किए जाने के बाद ये मुसव्वदा कतई शक्ल इख्तियार कर लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब पीर को पार्लिमानी इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, हुकूमत इस बिल को ऐवान में जल्द अज जल्द मंजूर कराने की कोशिश करेगी।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुसलसल जोर दिया है कि तलबा के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब पाल ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान से मुतालिक बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाने की गरज से एक कानून बनाने से मुतालिक अपने इरादे का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब बीजेपी के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने आज कहा कि वज़ीर आज़म मोदी नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करने से मुतालिक अपनी यकीन दहानी को हर सूरत हाल में पूरा करेंगे। मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से खुसूसी तौर पर नामज़द तेज़ी से समाअत करने वाली अदालतें कायम करने के फ़ैसले की सताइश की है ताकि पेपर लीक से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा केसों की समाअत की जा सके। मीडिया से बात करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि तेज़ी से समाअत करने वाली ये अदालतें यौमिया बुनियाद पर इन केसों की समाअत करेंगी ताकि नौजवानों को इंसाफ फराहम हो सके।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे और उन खतों पर दस्तखत कर चुके थे जिनमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान एक तालिबे इल्म की मौत हो गई है। वीडियो में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि पुलिस ने इस तालिबे इल्म की वालिदा की शिकायत पर एक FIR दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने वजाहत की है कि ये दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा है कि दिल्ली में एहतजाज से वाबस्ता कोई मौत नहीं हुई है और ये कि मस्कूरा खातून से मुतालिक वायरल वीडियो AI से बनाया गया डीप फेक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा में आज लगातार 5वें दिन शोरगुल जारी रहने के बाद ऐवान की कार्यवाही पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली मर्तबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और और बाकी कई पार्टीज के एमपी

0: पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA को हिदायत दी है कि वो नीट UG पेपर लीक के बाद की गई असलाहत पर अमल दरामद में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में तफसीली हलफनामे दाखिल करे। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य पर मुश्तमिल एक बेंच ने नीट पेपर लीक केस की समाअत करते हुए कहा कि इस हलफनामे में उन इकदामात का लाजिमी तौर पर जिक्र किया जाए जो असलाहत को इदारा जाति बनाने के लिए किए गए हैं, ना कि उन इकदामात का जिक्र किया जाए जो इस सिलसिले में आरजी तौर पर किए गए हैं। बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर करीबी नज़र रखे हुए है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज़ की नुमाइंदगी कर रही हैं, कहा कि हुकूमत बच्चों के इन मामलों से निमटने के लिए काफ़ी आगे तक कार्रवाई करने को तैयार है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा से अफसोस जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में लोगों की आवाज़ दबाए जाने को नज़रअंदाज कर रही है, जबकि उसने दूसरी जगहों पर इस तरह के वाक़यात की मुज़म्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर POK में अवाम के हकूक़ को मुनज़्ज़म तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे P हरीश ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हकूक़ की पामाली और मकबूज़ा कश्मीर नीज़ पूरे मुल्क में आज़ादी को कुचलने के वाक़यात का जिक्र किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश, अज़्म मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत, काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरगीब फराहम होगी। स्क्वॉश में भारत की अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वो क्वार्टर फाइनल में मिस्र की हबीबा रिज्क को 11-7, 11-5, 6-11 और 11-9 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं, जहां उनका मुकाबला मिस्र की खिलाड़ी बार्ब सामेह से होगा। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाक़यात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेज़ी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सज़ा देने की तजवीज़ से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाक़यात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और NTA को हिदायत दी हैं कि वो नीट UG पेपर लीक के बाद असलाहत पर अमल दरामद में पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में अवाम की आवाज़ को दबाए जाने को नज़रअंदाज करने पर अक़वामे मुत्तहिदा के खिलाफ आवाज़ उठाई है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक़ को मुनज़्ज़म तौर पर कुचलने का इल्ज़ाम आयद किया है। और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made

0: को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
5: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और AI से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
6: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी।

0: समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 billion पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड $25 trillion। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाउथराज और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप सभी समझ चुके होंगे आज के हमारे कलाकार हैं मनोज कुमार। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही खास है। आज जैसा भी हमने नाम लिया, एक ऐसे सितारे की हम बात कर रहे हैं जिनकी अदाकारी में सिर्फ एक कलाकार की चमक ही नहीं बल्कि देश का स्वाभिमान भी झलकता है। इनके हाथ का गाल पर आने का स्टाइल आज भी हमारी यादों में बसा है, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से भारत कुमार कहती है। जी हाँ, सिनेमा के सबसे देशभक्त और सदाबहार अभिनेता मनोज कुमार जी, आज उनका जन्मदिन भी है। अगले आधे घंटे तक हम उनकी जिंदगी के पन्नों को टटोलेंगे, उनके उन गीतों की यात्रा करेंगे जो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए इस संगीतमय सफर का आगाज करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

श्रोताओं, जब भी हम ये गीत सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना स्वतः ही बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनोज कुमार जी का असली नाम क्या था? चलिए हम आपको बताते हैं। मनोज जी का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था, और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। मनोज जी दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे। दिलीप जी की एक फिल्म आई थी शबनम, उसमें एक चरित्र था जिसे देखकर मनोज कुमार इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया। कांच की गुड़िया से शुरुआत की, लेकिन पहचान मिली फिल्म हरियाली और रास्ता और वो कौन थी से। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक और खूबसूरत गाना।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मनोज जी को भारत नाम कैसे मिला? चलिए आपको इसके पीछे की कहानी भी बताते हैं। 1965 के युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फिल्म शहीद देखी। वे मनोज जी को उनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे जय जवान जय किसान के नारे पर फिल्म बनाने का आग्रह किया। मनोज जी ने ट्रेन के सफर में ही उपकार की कहानी लिखी और यहां से जन्म हुआ एक नए चरित्र भारत का। तो आइए सुनते हैं उसी दौर का एक और खूबसूरत गाना।

हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार और हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता मनोज कुमार जी की। श्रोताओं, मनोज कुमार जी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि एक अद्भुत निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। पूरब और पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, उनकी हर फिल्म में समाज के किसी न किसी पहलू पर गहरा कटाक्ष और राष्ट्रप्रेम की झलक मिलती है। पूरब और पश्चिम में उन्होंने पश्चिमी संस्कृति और भारतीय मूल्यों के बीच जो संतुलन पेश किया और जनता को दिखाया, वो आज भी प्रासंगिक है।

श्रोताओं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित मनोज कुमार जी आज भी हमारी पीढ़ी के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। सिनेमा में उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका स्टाइल, उनके लिखे संवाद, उनके गीतों का राष्ट्रप्रेम हमेशा हमें प्रेरित करेगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर, और आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडी। जी हाँ, हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब गीत सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे, जब मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ें दिलों की धड़कनों को छू जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं यादों का ये खूबसूरत सफ़र इस खूबसूरत नगमे के साथ।

जी हाँ, ये खूबसूरत सा नगमा था फिल्म जाल का, जो कि 1952 में रिलीज़ हुई थी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, और आवाज़ थी हमारे हेमंत कुमार और आशा भोसले जी की। तो हमने ये जो आवाज़ थी, कितनी खूबसूरत आवाज़ होती है, और उस तरफ जो गाने होते थे ना, जो गीत होते थे, वो दिलों को छू जाते थे, और ऐसा लगता था कि ये हमारे ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पल हैं जो हम एक दूसरे से इन गीतों के ज़रिए बयां करते हैं, है ना। और पुराने गानों की बात अगर कही जाए, यानी कि गोल्डन इरा का ये समय रहा, और वो ऐसा रहा कि गोल्डन इरा इसलिए कहा जाता है कि वो सदा बाहर गाने रहे, हमेशा वो दिल को छू जाते हैं और हमें हर पल याद आते हैं। कभी हम सोचा होगा, हम अंताक्षरी खेलते हैं तो अक्सर हमें नए गीतों की याद नहीं आती, हमें ये गीत अचानक हमारे लबों पर आ जाते हैं। सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोए हुए हैं कि दिल को और दिमाग पर ऐसे छा जाते हैं कि कभी भी कोई भी मौसम हो तो मौसम के हिसाब से हमें गाने याद आ जाते हैं, कोई लम्हा हो तो उसके हिसाब से हमें गाने याद आ जाते हैं, है ना। और कुछ इस तरह से एक अगला हम नगमा सुनेंगे जो बेहद ही खूबसूरत है। खैर, इस गाने के बारे में हम आप बताना चाहेंगे कि इस गीत के जो संगीतकार एस डी बर्मन, और हम कहते हैं ना कि कहा जाता है कि उन्होंने इनकी धुन जो थी बहुत ही सहज बनाई गई थी। रिकॉर्डिंग के समय पूरा स्टूडियो जो था मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता था। इस तरह के गीत एस डी बर्मन साहब लिखा करते थे, और संगीतकार मतलब इस तरह के गीत संगीत दिया करते थे। तो चलिए सुनते हैं ये अगला एक नगमा, खूबसूरत सा

जी हाँ, तेरी नीली नीली आंखों के ये गाने सुनते हैं तो वो दिन, वो दौर, वो समय, वो सब कुछ याद आ जाता है। और 1950 का जो दशक है ना, वो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि कहते हैं ना, शहरों में बसते सपनों का वो दौर था। इस गीत में भी एक ऐसी खूबसूरती थी जो दिल को छू गई। क्यों, सही कहा ना, ये फिल्म है टैक्सी ड्राइवर की। हमने सुना ये गीत बहुत ही खूबसूरत सा, और आवाज़ जो थी वो थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। तो जो कहते हैं ना कि सदाबहार आवाज़ें, सदाबहार दिल पर बसने वाली, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़। जी हाँ, जो कि गोल्डन इरा के दौर का गाना गाने हम इसमें पेश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। और हमारे पास मैसेज करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेज सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। ये कार्यक्रम होस्ट कौन कर रहा है आप सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं हूँ राना तंवर, और कार्यक्रम मैटिनी मेलेडी आकाशवाणी वाणी इंद्रप्रस्थ पर आप सुन रहे हैं। और हमें बहुत सारे मैसेज आप करके भेज कर अपनी प्रतिक्रियाएं जैसे भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, और आप बेहद अच्छे से जानते हैं, हम फिर भी दोबारा बताएंगे, ipradiodelhi@gmail.com। इस पर आप हमें अपने भाव व्यक्त करके भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। हमें भेजा है सुदर्शन मुखी जी ने भी मैसेज भेजा है, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शांतिनगर से अनीता मुखी सिमरन, और इसी तरीके से हमें अजीत भास्कर जी ने भी मैसेज किया है। और आप सभी इसी तरह से जुड़े रहें, और सुनते हैं अगला एक नगमा जो कि है हमारी फिल्म श्री 420, 1955 में बनी फिल्म, जिसके गायक थे मन्ना डे और लता मंगेशकर। और ये गाना सुनकर ना सच में कुछ कुछ तो होता है।

जी हाँ, ये इस तरह के गीत हैं जो दिल को कुछ कुछ कह जाते हैं, है ना। जब हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं तो ये गाने बहुत काम आते हैं। और ये फिल्म का गीत था श्री 420, जिसमें सिंगर थी लता मंगेशकर, प्रबोध चंद्र दे, मन्ना डे जिन्हें कहते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर दिए जय किशन, दया भाई पंचाल, शंकर सिंह रघुवंशी, और इसे लिखा शैलेंद्र जी ने। और इस जो फिल्माया गया था वो राज कपूर, नरगिस जी थी। और इस तरह से खूबसूरत से जो हम गीत सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलेडी, आपकी दोस्त और होस्ट रहना तवर के साथ। अब हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मोहम्मद ये शमशेद बेगम की आवाज़ में। चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

जी हाँ, कौन कौन यहाँ पर मुस्कुराने लगा, गा गीत सुनकर डांस करने लगा। तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे खूब मस्त डांस कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोता भी इसी तरह से कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं। और अभी हमें मैसेज किया है अमीना तक्कान जी ने, और उन्हें कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। मास्टर अशोक कुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्हें भी ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। और शेख साहब जी, अजीत भावस्कर जी, उन्होंने हमें मैसेज किया है कि उन्हें ये गीत बहुत पसंद आया है। और इसी तरीके से हमें मैसेज करके आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं कि आपको गाने किस तरह से लग रहे हैं और आप क्या गाने सुनना चाहते हैं। ये 3 से 3:30 बजे कार्यक्रम होता है मैटिनी मेलोडी। आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर भेज सकते हैं, अपने आप बता सकते हैं कि आप पुराने गानों में क्या गाने सुनना चाहेंगे, तो हम उन्हें शामिल ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है रफ़ी साहब की आवाज़ का ये खूबसूरत सा नगमा।

0: जी हाँ, अभी सुन रहे हैं आप चौदहवीं का चांद मूवी से ये वाला नगमा। और ये है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रविशंकर शर्मा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। और अगले गीत की ओर हम बढ़ते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ का खूबसूरत नगमा।
1: मगर आपने तो कहा था कि
2: हीरा,
1: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: तो दोस्तों, मैटिनी मेलोडी से मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ 50 और शुरुआती 60 के दशक में इन सुनहरे नगमों ने आपकी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया होगा। तो मैं यानी कि राणा तब को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर मिलेंगे सिनेमा घर के एक नए और सुनहरे सफ़र के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें मैटिनी मेलोडी और आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त, है ना? तो अच्छे नेक इंसान बने और अच्छे काम करें, एक ऐसा काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून। तो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ आपका।
3: क्या ख्याल है आपका?

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 3 बजने को हैं और अब समय है हमारे कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

सामिन, कव्वाली का दौर बहुत अरसे से जारी और सारी है। कव्वाली के बोलों की तड़प रूह तक को झिंझोड़ देती है। आइए सामिन सुनते हैं वारसी ब्रदर्स और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली।

सामईन, अभी आप वारसी ब्रदर्स और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में यह कव्वाली सुन रहे थे। सामईन, कव्वाली के बोल अपने अंदर वो सहर रखते हैं कि दिल झूम उठता है और सारी फिजा सहर में डूबी हुई नजर आती है, और दिल ऐसा मसरूर होता है और चाहता है कि इस सहर से बाहर ही न निकले। तो ऐसी ही एक सहर आमेज कव्वाली से महसूस होते हैं और सुनते हैं कामिल हैदराबादी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली।

सामिन, अभी आप कामिल हैदराबादी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली सुन रहे थे। सामिन, सूफिया इकराम जो इबादत गुजार थे, वो चाहते थे कि उनका पैगाम हर जगह पहुँचे। कव्वाली की शुरुआत सूफी सिलसिले से हुई थी, जिसका मकसद कव्वाली के ज़रिए लोगों को खुदा के करीब लाना था और खुदा के वजूद का एहसास दिलाना था। आइए सामाइन सुनते हैं अब्दुल हमीद साबरी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में ये कव्वाली।

सामिन, अभी आप अब्दुल हमीद साबरी और उनके हमनवाओं की आवाज़ों में यह कव्वाली सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम महफिल समा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने कहा कि बातचीत अभी आगे भी होगी।
2: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को

0: सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में इस समय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बिल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार पांचवें दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरे स्थगन के बाद राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में और संशोधन करना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to the media after the meeting, Mr. Nadda said, during the meeting, they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
1: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
0: Union Minister Ashwini Vaishnav is now briefing the media about Cabinet's decision in the meeting held today. We now go over live to the briefing.
2: प्रयास चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे इज नाउ 99.6% इलेक्ट्रिफाइड और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क भारत बन गया है। और परसेंटेज टर्म्स में देखो तो स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड नंबर पे है। स्विट्जरलैंड इज 100% और इंडिया इज 99.6%। हालांकि स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क इज जस्ट अबाउट 5,000 किलोमीटर्स, 5,000 किलोमीटर उनका रेलवे नेटवर्क है और भारत का 135,000 किलोमीटर का ट्रैक किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क है। तो कंपैरिजन अगर करो, और उसके बाद में चाइना आता है नंबर 3 पे। चाइना इज़ अबाउट 80 के आसपास परसेंट है और उसके बाद में फिर कई कंट्रीज़ आती हैं। तो ओवरऑल आर कंट्रीज परफॉर्मेंस ऑन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन वेरी गुड। और अभी तो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन हैज़ डन वेरी वेल। एज ऑल ऑफ यू अवेयर, पिछले 17 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन ट्रेन जींद से इनॉग्रेट की थी। कल या रादर आज सुबह तक इसके 1,000 किलोमीटर्स फ्लॉलेस कंप्लीट हो गए। 1,000 किलोमीटर्स ऑफ हाइड्रोजन ट्रेन रनिंग विदाउट एनी इश्यूज। शुरू का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन के कॉमर्शियल रन में, तो वी आर वेरी विजिलेंट ओवर ईच एंड एवरी पैरामीटर। वी आर मेजरिंग अबाउट सम 130 odd parameters continuously हम measure कर रहे हैं उसमें। कैसा उसका behavior है, किस तरह के उसके parameters के values आ रहे हैं, वो सब चीज़ें measure कर रहे हैं। तो इस project से 16 million ton जो extra cargo आएगा, that is equivalent to planting 27 lakh trees। यानी 27 lakh trees अगर हम लगाते, उससे जितना carbon dioxide sequester होता, कम होता, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता, उतना इस रेलवे लाइन के बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से कम होगा।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has said that it directed the departments to prepare a proposal for fast track courts to tackle paper leaks and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, the Prime Minister said the draft has provisions for fast track courts and stringent punishment. He said after incorporating the suggestions of the cabinet colleagues, the draft will be given its final shape. The Prime Minister said government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest when it meets next week. Both Houses of Parliament were adjourned for the day till Monday's ruckus continued for the fifth consecutive day today over the issues of NEET paper leak and student protest. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that New Delhi Metro Station has been closed till further instructions. The DMRC also informed that no interchange facility shall be available at this station. Earlier, 17 metro stations were closed since 7:30 this morning until further notice. Interchange facilities is available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The Delhi Police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. And that is the end of this news bulletin.

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे दें। सबसे पहले गुमशुदा व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनम, पुत्री नूर मोहम्मद। सोनम की उम्र है 24 वर्ष। ये स्त्री हैं, इनका शरीर मध्यम है, कद है 5 फुट 4 इंच। ये 11 जुलाई 2026 से नंद नगरी दिल्ली से लापता है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है निशा, पत्नी राजेंद्र। निशा की उम्र है 24 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, शरीर मध्यम है। ये 28 जून 2026 से नंद नगरी दिल्ली से लापता है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है धर्मेंद्र, पुत्र खेमचंद्र। धर्मेंद्र की उम्र है 38 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा है, आंखें गोल, बाल का रंग काला है, चेहरा गोल। ये 27 मई 2026 से मेरठ यूपी से लापता है। अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है डॉली, पत्नी आदेश।

डॉली की उम्र है 46 वर्ष, कद है 5 फुट 5 इंच, चेहरा सामान्य है, रंग ये हुआ, ये सोलह मई 2026 से मेरठ यूपी से लापता है। अंकुल पुत्र मिघपाल, अंकुल की उम्र है 16 वर्ष, इनका रंग है सांवला, शरीर पतला है, कद है 4 फुट। इन्होंने नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग के लोअर पहनी हुई है। ये मुरादाबाद यूपी से लापता हैं। वकार हुसैन पुत्र अहमद हुसैन, वकार की उम्र है 50 वर्ष, रंग सांवला, कद 6 फुट। ये मुरादाबाद यूपी से लापता हैं। अगली गुमशुदा का नाम है मुस्कान पुत्री निधि सिंह। मुस्कान की उम्र है 15 वर्ष, कद है 5 फुट, शरीर मजबूत, रंग गोरा, चेहरा गोल है। ये 29 जनवरी 2026 से गांव नाथूपुर गुरुग्राम से लापता है। और अंत में गुमशुदा व्यक्ति का नाम है कल्लू पुत्र राजपाल। कल्लू की उम्र है 35 वर्ष, रंग गेहुआ, शरीर सामान्य है। ये 14 अप्रैल 2026 से नरहाड़ा लोहिया नगर मेरठ यूपी से लापता है। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में यदि कोई सूचना आपके पास है या कोई भी सूचना आपको मिले तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने वहां पर या फिर आप टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 पर डायल करके इन गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचना साझा कर सकते हैं। अभी हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक।
1: मैं हूं प्रज्वल। आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में स्वागत है।
0: आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मनोरंजन की दुनिया की और एक प्रेरणादायक सफलता कहानी की और कुछ ऐसे विषयों पे कि जो आज के युवाओं के बीच चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं।
1: हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करेंगे मनोरंजन की दुनिया की, क्योंकि फिल्मों, संगीत और वेब सीरीज का युवाओं की ज़िंदगी में एक खास स्थान है।
0: बिल्कुल, और पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन को देखने का तरीका काफ़ी बदल गया है। पिछले किसी फिल्म या कार्यक्रम का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आजकल एक क्लिक पर ही पूरी दुनिया का कंटेंट हमारे सामने मौजूद होता है।
1: देखने के लिए इतना कुछ है कि समझ ही नहीं आता कि देखें क्या।
0: कभी कभी तो इतना वक्त गुजर जाता है सिर्फ सर्च करने में, फिर कुछ देखने का मन ही नहीं करता।
1: लेकिन कुछ ऐसे शोज हैं जिन्होंने लगातार दर्शकों का ध्यान खींचा है। उनमें से सबसे पहला नाम है जो मेरे दिमाग में आता है, वो है गुल्लक।
0: तो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले 45 मिनट का ये सफर रहेगा बहुत ही सुहाना। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं एक बेहतरीन गाना।

0: वाह, क्या ताजगी थी इस गाने में। अब इसी ताजगी के साथ शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक। अभिषेक, हिंदुस्तान में भी शुरुआत से ही फिल्मों को लेकर लोगों में बहुत प्यार रहा है और सिनेमा का बहुत गहरा असर पड़ता है दर्शकों पर।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रज्वल, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम सभी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फिल्म के किरदारों का, कहानियों का, चाहे उनके बोलने का स्टाइल हो, पहनने का हो, या फिर किसी भी बात का, वो हमें अपने खुद में इमेजिन करने लगते हैं।
0: हाँ, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिससे लोग इतने प्रेरित होते हैं कि उससे उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। जैसे मुझ पर एक फिल्म का बहुत गहरा असर पड़ा, वो फिल्म है तमाशा। इसके निर्देशक हैं इम्तियाज़ अली जी। क्या बारीकी से दर्शाया है इस फिल्म को।
1: इम्तियाज़ अली साहब के की कामी काम की बारीकियों के तो क्या ही कहने, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और हाल ही में मैं इनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई, मैंने वो फ़िल्म देखी, उसका नाम था मैं वापस आऊँगा। मैं क्या बताऊँ प्रज्वल, दिल भर आया मेरा, उनके क्राफ्ट की मैं क्या तारीफ़ें करूँ। हर एक एक एक्टर ने अपना किरदार बहुत बखूबी से निभाया, खासकर नसीरुद्दीन साहब का किरदार तो हमेशा के लिए मेरे दिल पर उतर गया।
0: हाँ, कुछ निर्देशकों की कला के पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत और कई कहानियाँ छुपी होती हैं, और उनमें से ही एक हैं इम्तियाज़ अली। इनका जन्म जमशेदपुर झारखंड में हुआ। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज तेली यूनिवर्सिटी से की, और कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने फिल्म मेकिंग शुरू कर दी थी, और फिर टीवी प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत मेहनत की।
1: तो आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

0: वाह क्या गाना था। और फिर 2005 में आई इनकी डेब्यू फिल्म सोचा ना था, लेकिन इनके नाम को पहचान मिली फिल्म जब वी मेट से, जिससे इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग मिला और नॉमिनेट किया बेस्ट डायरेक्टर के लिए। फिर क्या था, एक के बाद एक फिल्म जैसे लव आजकल, रॉक स्टार, हाईवे, तमाशा जैसी फिल्मों से इम्तियाज अली जी को बहुत बड़ा नाम मिला, साथ ही कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
1: अभिषेक, इनके डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले क्राफ्ट के अलावा इनकी फिल्म के गानों की तो दुनिया दीवानी है। हर एक गानों में गहरे भाव दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी मेकिंग के पीछे खुद इम्तियाज अली की इन्वॉल्वमेंट होती है।
0: तो चलिए, जब इनकी फिल्मों के गानों की बात हो ही गई है, तो सुनते हैं दिल को छू जाने वाला ये गाना, तुमसे ही।

0: ये प्यारा सा गाना हमारे सफ़र को ले आया है अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है क्विक बज़, जिसमें हम जानेंगे देश और दुनिया के कुछ खास अपडेट्स।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है। भारत के 125 प्लेयर्स अलग-अलग गेम्स में देश के लिए खेल रहे हैं और देश भर की निगाहें इंडियन प्लेयर्स के शानदार परफॉर्मेंस पे टिकी है।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ दुनिया भर में कई इंटरनेशनल गेम कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे खेल प्रेमियों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है।
1: और आज फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर और यश जैसे बड़े सुपरस्टार नजर आएंगे और इसका ट्रेलर ग्लोबल लॉन्च के साथ चर्चा में है।
0: और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग रामायण ट्रेलर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। फैंस इसके विजुअल्स, VFX और स्टार कास्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।
1: तो आइए सुनते हैं अगला ये गाना।

0: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है इतिहास के उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन एक विशिष्ट पहचान दर्ज की।
1: और आज ही के दिन 1932 में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी।
0: आज के ही दिन 1969 में अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार इंसानों को चांद पर उतारने का अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा करके धरती पर सुरक्षित वापस लौट आया।
1: और आज ही के दिन सन 2000 में एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। अपने धैर्यपूर्ण खेल और बेहतरीन रणनीति के दम पर उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया था। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: आज के दिन भारत में इनकम टैक्स डे आयकर दिवस मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स सिस्टम शुरू किया था।
1: और आज ही के दिन 1923 में स्विट्जरलैंड के लॉजन शहर में लॉजन एग्रीमेंट पर साइन हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस एग्रीमेंट से यह फाइनल हुआ था कि आज के मॉडर्न टर्की बॉर्डर कहाँ तक होंगे, और पूरी दुनिया में उसे ऑफिशियली एक देश के तौर पर पहचान मिली थी।
0: आज ही के दिन सन 2000 में विजय,
1: चलिए शुरुआत करते हैं अगले गाने का।

0: अभी आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम युववाणी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है yuvvanifeedback@gmail.com पर। yuvvanifeedback@gmail.com पर फिर मिलते हैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक।
1: और मैं हूं प्रज्वल।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक

0: अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said during the meeting they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
1: Meanwhile, spokesperson of CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
3: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed this today while talking to the reporters at the Parliament premises. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of the students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth line of Bellary Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. The project is planned on PM Gati Shakti National Master Plan with a focus on enhancing multimodal connectivity and logistic efficiency. It will provide seamless connectivity for movement of people, goods and services. The project will cover three districts across Karnataka and Andhra Pradesh. The Cabinet has also approved Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country. The scheme will have a total financial outlay of 3,030 crore rupees.
4: Andhra aur Karnataka ko jodne wale.
5: The Cabinet has approved the third and fourth railway lines on the important economic corridor connecting

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: तो प्रियंका बहन, आज हमारे भाइयों बहनों के लिए आपने क्या तैयारी की रखी है?
0: भाई, हम तो लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम है हमारा, तो तरह तरह के लोकगीत लेकर आते हैं, मौसम के हों, तीज त्योहारों के हों, या फिर हों सौंदर्य के। जैसे कि हमारी जो बहनें होती हैं, जब श्रृंगार करती हैं तो वो बात
1: जी,
0: करती
1: आप
0: हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने रोली बरुआ को, पुष्पा गोसाई को और ज्योत्सना को भी सुनाने की बात कही थी।
0: बिल्कुल, तो सुनते हैं सबसे पहले रोली बरुआ की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: तो बहनों भाइयों, अभी आप सुन रहे थे रोली बरुआ की आवाज़ में ये रागनी। प्रियंका बहन, बहुत ही सुंदरता के साथ रोली ने हमारे जो परिवेश में, हमारे कल्चर में ना, साज सिंगार का बड़ा वो है। और साज सिंगार जो है वो सिंगार के साथ साथ एक बचत, एक आर्थिक संबल भी है, वो महिलाएं हों, पुरुष हों, मजदूर हों, किसान हों, सभी के लिए। और बरुआ ने बड़ी बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया कि हम सरकार से मदद लेंगे, कर्ज लेंगे, बैल खरीदेंगे, मेहनत करेंगे और फिर कंगन पहनेंगे।
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये एक सीख है हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों के लिए, हम सभी के लिए, कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं और योजनाओं का फायदा लेते हुए।
1: बिल्कुल
0: तो आइए एक बार फिर ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में।

0: अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई की आवाज़ में ये लोकगीत। और भाई आ जा रे मेरे भरतार, घने दिन हो लिए पीहर में। भाई वो अपनी विरह को बता रही थी, अपने पिया को याद कर रही थी और बता रही थी कि अब तो बस गोना कराओ और मुझे ले जाओ।
1: भाई प्रियंका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें एक और भी मर्म है, वो ये कि देखिए, ग्रामीण परिवेश और ख़ास तौर से भारतीय परिवेश जो है, इसमें संबंधों का बड़ा प्यारा सा जाल बना हुआ है। महिलाओं को इसमें दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। वो क्या करती है कि अपना पीहर जो है, मायका जो है और पति का घर जो है ना, वो दोनों के बीच में एक प्यारा सा पुल बनाने का काम करती है। और इसका इस ये सारी एक कोशिश में उनको कई बार विरह वेदना भी झेलनी पड़ती है, तो ये भी प्यार को, संबंधों को मजबूती देता है।
0: बिल्कुल। और अब सुनवाते हैं रेनू वर्मन की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: रेणु बर्मन के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता, हाजिर हूं लेकर एक बार फिर से हमारे खेलों से जुड़ा खेल कार्यक्रम। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं
3: हेमंत
2: और मैं लेकर के चलेंगे आपको खेल जगत के उस सफर पर जहां पर हम आपको अपडेट कराएंगे हर एक खेल गतिविधि से। तो आज के इस कार्यक्रम में जिन खेल खबरों को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की,
3: बात करेंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे T20 मुकाबले की,
2: इसके साथ साथ शूटिंग में किसका लगा है पदक पर निशाना इसके बारे में भी आपको बताएंगे,
3: और साथ ही चलेंगे यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप की तरफ।
2: इसके साथ साथ अन्य खेल गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो उसके साथ जो कि खेली जा रही है ग्लासगो में, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ, जहां पर अभी तक भी बहुत सारे उलटफेर जो है भारतीय दृष्टिकोण से हो चुके हैं, लेकिन क्या कुछ खास अब तक हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स में, आइए सुनते हैं।
4: The Commonwealth Games.
5: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही 11 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ का औपचारिक आगाज हो गया। उद्घाटन समारोह में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने पारंपरिक परेड ऑफ नेशंस में हिस्सा लिया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और स्कॉटिश कलाकारों के शानदार प्रदर्शन के बीच खेलों का उत्साह चरम पर रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल ने शानदार अंदाज में प्रवेश किया। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ी हाथों में तिरंगा थामे परेड ऑफ नेशंस का हिस्सा रहे। समारोह के दौरान भारतीय दल का उत्साह और जोश देखने लायक रहा, जबकि पूरे स्टेडियम में तिरंगे की मौजूदगी ने हर भारतीय के लिए गर्व का पल बना दिया।
6: Athletes from India, Olympic javelin champion Neeraj Chopra is the big attraction. He won gold at the 2018 Commonwealth Games. Boxer Lovlina Bourgain is back as well and brings in the baton. Three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag.
5: इस रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही भारत ने भी पहले ही दिन जीत के साथ शानदार आगाज किया। लॉन बॉल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा

0: जहां पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर सबको चौंका दिया। वही महिला जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी ने भी जीत से भारत का खाता खोला। अब नजरें दूसरे यानी आज के दिन पर हैं, जहां जिम्नास्टिक से लेकर बॉक्सिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग तक भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक चुनौती पेश करेंगे। आइए जानते हैं आज भारत के खेलों का शेड्यूल क्या रहने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन पूरे जोश के साथ जारी है। दोपहर के मुकाबलों की शुरुआत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के साथ हुई, जिसमें तपन मोहंती, स्वाथिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह ने पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भारत की चुनौती पेश की। इसके बाद पैरा स्विमिंग के पुरुष S13 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में रवि वीरा, वेंकट भवानी, कार्तिक बुडिगना और इमाम अली ने पूल में अपना दमखम दिखाया। भारत के स्टार तैराक श्रीहरि नटराज ने पुरुष 50 मीटर बैक स्ट्रोक हीट्स में अपनी रेस पूरी की। अब शाम के मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले हैं। शाम 5:40 पर पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष लाइटवेट वर्ग में अशोक और परमजीत कुमार भारत की ओर से चुनौती पेश कर रहे हैं। शाम 7:30 पर एक बार फिर निगाहें लॉन बॉल्स पर होंगी, जहां पहले मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज करने वाली भारत की अनुभवी जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले में उतरेंगी। पहले मैच में भारतीय जोड़ी ने माल्टा को कड़े संघर्ष के बाद टाई ब्रेक में हराया था। भारत ने पहला सेट 7-1 से अपने नाम किया, लेकिन माल्टा ने दूसरे सेट में 4-3 से वापसी करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद टाई ब्रेक में पिंकी के शानदार निर्णायक शॉट की बदौलत भारत ने 1-0 से जीत दर्ज कर ली। अब ये अनुभवी खिलाड़ी भारतीय जोड़ी उसी आत्मविश्वास के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से मैदान पे उतरेगी। इसी के साथ रात 10:20 पर एक बार फिर सभी की निगाहें लॉन बॉल्स के स्टार खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल पर होंगी। पहले ही मुकाबले में पुतुल ने मौजूदा विश्व चैंपियन कनाडा के रैन बेस्टर को रोमांचक मुकाबले में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। पहले सेट में पुतुल ने 5-4 से बढ़त बनाई, दूसरे सेट में रैन बेस्टर ने 7-3 से वापसी की। इसके बाद मुकाबले का फैसला टाई ब्रेक में हुआ, जहां पुतुल सोनोवाल ने 1-0 से जीत दर्ज करके भारत के लिए यादगार शुरुआत की। अब उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड के सिसिल अलेक्जेंडर से होगा, जिसमें भारतीय प्रशंसकों को उनसे एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इसके बाद 10:40 पर महिला हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजामणि भारत की चुनौती पेश करेंगी। वहीं रात 11:00 से बॉक्सिंग में भी 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह का जादू चलता हुआ नजर आएगा। जादूमणि का सामना मेजबान स्कॉटलैंड के एरान कलन से होगा। और दिन के आखिरी मुकाबले में रात 12:29 पर पैरा पावर लिफ्टिंग के पुरुष हैवीवेट वर्ग में सुधीर और झंडू कुमार भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि इन सभी मुकाबलों में से कौन से खिलाड़ी पदक के लिए दावेदारी पेश करते हैं और कौन से खिलाड़ी को लगती है निराशा हाथ। बने रहिए कॉमनवेल्थ गेम्स की हर एक अपडेट के लिए आकाशवाणी के साथ।
1: This is the Commonwealth Games. This is Glasgow.
0: तो कॉमनवेल्थ खेलों में जो इस वक्त की अपडेट है उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमने जैसा अभी बताया कि कुछ मुकाबले जो हैं वो दोपहर को ही शुरू हो चुके हैं, तो उनके रिजल्ट जो हैं वो हम सबके समक्ष हैं। इस वक्त जो भारतीय तैराक हैं श्रीहरि नटराज, उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा की हीट में 25.52 सेकेंड का समय निकालकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है हेमंत। और yes. नटराज ने 16 क्वालिफायर में 14वें सबसे तेज तैराक के रूप में जगह बनाई है और वो आज देर रात सेमीफाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसी के साथ साथ आज पैरा तैराकी जो है उसके भी मुकाबले हुए हैं, तो बुडिगिना और अली इमाम जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत के लिए एक और खुशखबरी है, तो भारत के रवि वीरा, वेंकट बुडिगिना और अली इमाम ने पुरुषों की S13 100

0: मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बुडिगिना ने हीट में 57.10 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं अली इमाम ने 1:05.32 सेकंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। रवि बीरा वेंकट बुडिगिना और अली इमाम ने भारत के लिए पैरा तैराकी के जो अभियान की शुरुआत कर दी है, ये फ्री स्टाइल हीट से हुई है और इसके बाद जो फाइनल है ये भी आज को देर रात को ही खेला जाना है। इसके साथ साथ हेमंत, दोपहर में आज जिम्नास्टिक के भी मुकाबले थे, तो उन जिम्नास्टिक के मुकाबलों का जो अभी सब डिवीजन समय है वो हम दो में रखा गया है, तो उसमें हमारे तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर दास और योगेश्वर सिंह जो हैं वो यहाँ पर अपना जो मुकाबला है वो खेलेंगे और इसके जो रिजल्ट हैं हम लगातार अपने सुनने वालों को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हम लगातार आपके समक्ष लेकर आते हैं हर एक वो खेल की जुड़ी हुई खबर जो आप सुनने के इच्छुक होते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस वक्त क्योंकि अब समय हो चुका है हेमंत के पास चलने का, तो हेमंत बताइए क्या है आपके पिटारे में।
2: कविता, बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले की, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 125 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने 13.2 ओवरों में ही 3 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच जीत लिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय तेज गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया। मैच की पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों के आगे रन बनाने में भारी संघर्ष करना पड़ा। वेस्ली मेदेवेरे ने सबसे अधिक 34 गेंदों में 39 रन बनाए, जबकि तादिविनाशे मारुमानी ने 27 रनों की पारी खेली। अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा इस मैच में कोई बड़ा कमाल कर पाए और सिर्फ 4 रन ही बना सके। भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी अनुशासित रही। मयंक यादव ने अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 18 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनका साथ देते हुए प्रिंस यादव ने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को भी 1-1 विकेट मिला। इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवरों में 125 रन पर ही सिमट गई। 126 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक रुख अपनाया। ओपनिंग करने आए 15-वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली और सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 4 शानदार छक्के जड़े। वैभव का ये प्रदर्शन दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को बहुत अच्छी तरह संभाला। किशन ने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों की नाबाद पारी में 3 चौके जड़े। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैच में कभी भी दबाव महसूस नहीं होने दिया। टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवरों में 3 विकेट खोकर 126 बना लिए और 40 गेंद शेष रहते मैच को अपने नाम कर लिया। ये जीत भारतीय टीम के लिए बेहद खास थी। हाल ही में T20 सीरीज में मिली लगातार हार और खराब फॉर्म के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज कर वापसी की है। 15-वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी द्वारा 19 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक इस मैच का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू रहा, जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया। मयंक यादव को उनकी शानदार और किफायती गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के शीर्ष क्रम को दबाव में दिया था। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। इस शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। सीरीज का दूसरा और तीसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर यानी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम को सीरीज में बने रहने के लिए अगले मैच में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार करना होगा, जबकि भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मैच के बाद मैन ऑफ द मैच रहे मयंक यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट Zimbabwe that this is a good help for the fast bowler in the wicket. So this is the first time I'm playing in Zimbabwe and Harare. So yeah, it's a great feeling. And when I was bowling there, and I was getting a lot of help from the wicket, and I think that helped a lot in the team for the team. Yeah, feels great, especially like now after the first game we had a good result, and going into the second T20, obviously like it will be. I will take as a challenge again to come again and perform again for the team and to help the team to win again.
0: तो यहाँ पर क्रिकेट की खबरों को ही आगे बढ़ाते हुए आपको अब बताते हैं एक और क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर के बारे में। तो फिलहाल 9 जून से ओवल में खेला जाएगा WTC का फाइनल। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने बताया कि साल 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल 9 से 13 जून तक द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पिछले साल 2027, 2029 और 2031 2031 के अगले तीन WTC फाइनल की मेजबानी के अधिकार हासिल किए थे। अब तक खेले गए WTC के तीनों फाइनल भी ब्रिटेन में ही आयोजित हुए हैं। यह दूसरा मौका होगा जब द ओवल WTC फाइनल की मेजबानी करेगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2027 में होने वाली एशेज सीरीज का पहला मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। पहला टेस्ट 18 से 22 जून, दूसरा लॉर्ड्स में 30 जून से 4 जुलाई, तीसरा एसबेस्टन में 8 से 12 जुलाई, चौथा साउथैम्पटन में 21 से 25 जुलाई और आखिरी ओवल में 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच खेला जाएगा। और अब जो है हम आपको लेकर के चलते हैं क्रिकेट के मैदान से निकलकर सीधा शूटिंग रेंज पर, जहां पर जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने शूटिंग जगत के लिए एक कारनामा जो है वो कर दिया है और जो मेडल के साथ खाता इंडिया का खुल चुका है। जी हाँ, चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, जो भारत का इस टूर्नामेंट में पहला मेडल भी है। 22 साल की भारतीय शूटर ने कुल 243.4 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और ये जीतने के बाद गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गई। हांगझोऊ में मिला ये सिल्वर मेडल संयम का दूसरा ISSF वर्ल्ड कप मेडल था। इससे पहले उन्होंने कतर के दोहा में हुए 2025 ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भी महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चीन की याओ 243.6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि ईरान की ओलंपियन हनीह 221 पॉइंट के साथ तीसरे पायदान पर रही। कई बार ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुकी भारत की सुरुचि सिंह फाइनल में कुल 137.6 पॉइंट्स के साथ सातवें पायदान पर रही। वहीं क्वालिफिकेशन राउंड में 589 पॉइंट्स के साथ दसवें स्थान पर रहने वाली संयम फाइनल में पहुंची, क्योंकि उनसे आगे रहने वाली दो शूटर्स जिनमें दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर भी शामिल थी, रैंकिंग पॉइंट्स के लिए खेल रही थी तो वो इसलिए फाइनल के लिए अयोग्य हो गई थी और चौथे पायदान पर यहाँ पर रही। क्वालिफिकेशन में मनु के साथ भारतीय दल में सबसे आगे रही और चौथे पायदान पर जैसे मैंने बोला, वहीं सुरुचि जो है इसी वर्ग में 9वें स्थान पर रही। अब इसके साथ साथ ईशा और लक्षिता क्वालिफिकेशन में 13वें और 36वें स्थान पर रही। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में कोई भी भारतीय शूटर जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन में भावेश शेखावत भारत के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, जिनका जो स्थान है वो 22वां रहा। ओंकार सिंह, अनीश भानवाला, प्रदीप सिंह शेखावत और आदर्श सिंह भी फाइनल में जगह नहीं बना पाए। ISSF वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी साल के आखिर में होने वाले ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो दिसंबर में रोम में आयोजित होने वाला है। ये टूर्नामेंट मंगलवार को समाप्त होगा और इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ संयम ने जो कारनामा किया है, मेडल जीता है सिल्वर, उसके बाद संयम ने क्या कहा, लीजिए सुनिए।
1: Mine was to fight till the last shot, which I did. So I'm really satisfied with how I played. And there was nothing like she's the world number one or what. I was doing my work and she was doing hers. The best wins. It's a really huge medal. It came after a very long wait and, before many things went wrong and this came. So it's really special for me.
0: जी हाँ बिल्कुल, जब लाइफ में कभी अप एंड डाउन आते हैं हेमंत, और एक जो हमारा लक्ष्य होता है वो लक्ष्य हमें कभी कभी इतना दूर नजर आने लगता है, लेकिन उसके लिए हमारा जो प्रयास है ना वो दिन रात चलता है, तो जो विक्ट्री मिलती है उसका तो फिर मजा ही कुछ और होता है। और उन्हीं अनुभवों के जो अभी पल है वो हमने संयम की बातों में सुने, क्योंकि इस विक्ट्री के लिए उन्होंने बहुत एक लंबा इंतजार किया था। अब शूटिंग रेंज से निकलकर हम चलते हैं हॉकी के टर्फ पर, जहां तैयार है मेरे सहयोगी हेमंत।
2: बात करते हैं हॉकी की। मस्कट ओमान में आयोजित हो रही यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 में गुरुवार को खेले गए मैचों में भारतीय टीमों ने अपना विजय अभियान जारी रखा। एलिट पूल के इस मुकाबले में भारतीय महिला सब जूनियर हॉकी टीम ने कजाकिस्तान को 10-0 के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही भारतीय लड़कियां पूरी तरह हावी रहीं, जहां नौशीन नाज ने मुकाबले के पहले ही मिनट में लगातार 2 गोल दागकर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारतीय आक्रमण और भी आक्रामक हो गया, जहां संदीपा कुमारी ने 11वें, 16वें और 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी शानदार हैट्रिक पूरी की।

0: गोल कर भारत को शुरुआत में 3-2 से आगे रखा। बांग्लादेश के लिए सोहराब सोटोन और मोहम्मद हुसैन ने गोल कर मैच में रोमांच बनाए रखा। हालांकि दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। केतन कुशवाहा ने 12वें और 15वें मिनट में 2 और गोल दागकर मैच में अपने 4 गोल पूरे किए। रोमित पाल, प्रहलाद राजभर और राहुल यादव के गोलों की मदद से भारत ने ये मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। इससे पहले टूर्नामेंट के शुरुआती दिनों में भी भारतीय पुरुष टीम ने मेजबान ओमान को 14-0 के बड़े अंतर से था, जिसमें आशीष तानी पूर्ति ने बेहतरीन हैट्रिक लगाई थी। वहीं एक अन्य हाई स्कोरिंग महामुकाबले में भारतीय लड़कों ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-4 से धूल चटाकर पूल में अपनी बादशाहत कायम की थी। महिला टीम ने भी इससे पहले मजबूत चीन को 2-2 की बराबरी पर रोका था और उज्बेकिस्तान के खिलाफ 16-0 की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जबकि टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में कजाकिस्तान को 8-3 से हराया था। भारतीय सब जूनियर टीमों के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके हाई प्रोफाइल कोचिंग स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। पुरुष टीम को भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सरदार सिंह प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिनकी आक्रामक रणनीति मैदान पर साफ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर महिला टीम की कमान पूर्व स्टार खिलाड़ी रानी रामपाल के हाथों में है, जिनके मार्गदर्शन में युवा महिला खिलाड़ी बेहतरीन तालमेल और अनुशासन के साथ खेल रही हैं। ये चैंपियनशिप केवल एशियाई स्तर के गौरव के लिए नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित होने वाले आगामी यूथ हॉकी 5S विश्व कप के लिए आधिकारिक एशियाई क्वालिफायर भी है। टूर्नामेंट के शीर्ष पायदान पर रहने वाली टीमें सीधे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारतीय सब जूनियर टीमों के इस अजय और धमाकेदार फॉर्म को देखते हुए खेल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत न केवल खिताब जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, बल्कि वह विश्व कप का टिकट भी बेहद आसानी से हासिल कर लेगा। आगामी नॉकआउट मैचों में भी दोनों टीमों से इसी विजयी प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद है।
1: और अब हॉकी के टर्फ से निकल के आपको लिए चलते हैं एक ऐसे खेल की तरफ जिसे पासों का खेल कहा जाता है, और बहुत ही ज्यादा सुकून दिमाग से खेले जाने वाला ये खेल है। मुझे लगता है कि शायद श्रोता तो समझ गए, पर क्या तुम समझे हेमंत?
2: बिल्कुल
1: समझ चुके हो। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
2: हम बात कर रहे हैं चेस की।
1: जी हाँ, बिल्कुल आप सही है, हम बात कर रहे हैं चेस की, जिसके लिए टीम जो है वो अनाउंस हो गई है फिडे चेस ओलंपियाड के लिए। इंडिया ओपन में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो हैं गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंदा आर, निशाल सरीन एंड विदित गुजराती। तो इनके जो कैप्टन है वो श्रीनाथ नारायण रहने वाले हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर हम महिलाओं की बात करें तो इंडिया जो विमेन टीम है उसमें हम्पी कोनेरू, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री बी जो है वो शामिल रहेंगी। और ये जो चैंपियनशिप है, मैं आपको बता दूं, ये सितंबर 26 से शुरू होकर 27 तारीख तक खेली जाएगी। ये चेस ओलंपियाड समरकंद में होने वाला है, और इसमें जो महिलाओं की कैप्टन है वो है एस मिश्रा, जिनको कमान जो है वो फिलहाल टीम की दी हुई है। और इसी के साथ साथ अब हम आपको लिए चलते हैं स्क्वैश की खबरों के लिए हेमंत के पास।
0: जी हाँ, बात करते हैं ओंटारियो कनाडा में चल रही वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत की स्टार खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त अनहत सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया की बेहतरीन जूनियर खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है। शुक्रवार की रात खेले गए बेहद तनावपूर्ण रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 17 वर्षीय अनहत ने मिस्र की हबीबा रिज्ग को 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। ये जीत केवल अनहत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खास है, क्योंकि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अब वो भारतीय चुनौती पेश करने वाली एकमात्र खिलाड़ी बची है। मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार देर रात हुई, जहां कोर्ट पर अनहत सिंह और मिस्र की हबीबा रिज्ग आमने सामने थी। मिस्र को स्क्वैश की दुनिया का पावर हाउस माना जाता है और किसी भी मिस्र के खिलाड़ी को हराना आसान नहीं होता, लेकिन अनहत ने पहले गेम से ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क आक्रामक शैली और सटीक ड्रॉप शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए हबीबा को कोर्ट के चारों कोनों में दौड़ाया। पहला गेम अनहत ने 11-7 से अपने नाम किया, जहां उनकी फुर्ती और कोर्ट कवरेज देखने लायक थी। दूसरा गेम भी अनहत के पक्ष में रहा, उन्होंने अपनी लय बरकरार रखते हुए हबीबा की गलतियों का फायदा उठाया और 11-5 के स्कोर के साथ मैच में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला एक तरफा होगा और अनहत सीधे 3 गेमों में जीत दर्ज कर लेंगी, लेकिन मिस्र के खिलाड़ी अपनी जुझारू क्षमता के लिए माने जाते हैं और हबीबा ने तीसरे गेम में जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और खेल की गति को धीमा करते हुए अनहत को गलतियां करने पर मजबूर किया। तीसरे गेम में हबीबा ने 11-6 से जीत दर्ज कर

0: मैच को जीवित रखा और स्कोर 2-1 कर दिया। चौथा गेम इस मैच का सबसे रोमांचक हिस्सा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक एक पॉइंट के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। स्कोर 9-9 की बराबरी पर था और यहां से किसी भी तरफ जा सकता था। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। ऐसे दबाव के क्षणों में अनाहत का बड़ा मैचों का अनुभव काम आया। उन्होंने संयम नहीं खोया और लगातार 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करते हुए गेम 11-9 से जीत लिया और इसी के साथ मैच 3-1 से अपने नाम कर लिया। जीत के बाद अनाहत ने हवा में मुक्का लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया, जो कि उनकी मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। इस जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अनाहत सिंह से पहले भारतीय दल को निराशा हाथ लगी थी। पुरुष वर्ग में भारत की उम्मीद आर्यवीर दीवान प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए थे और अन्य खिलाड़ी भी शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से विदा ले चुके थे। ऐसे में अनाहत के कंधों पर देश की उम्मीदों का भार था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मलेशिया की डाइस ये सैन ली को एक तरफा मुकाबले में हराया था। उस मैच में अनाहत ने 11-4, 11-8 और 11-3 के स्कोर के साथ जीत दर्ज की थी। वो प्रदर्शन इस बात का संकेत था कि अनाहत इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए आई हैं। अब सभी की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां अनाहत का सामना एक और मिस्र की खिलाड़ी बार्ब सामेह से होगा। ये मुकाबला और भी कड़ा होने की उम्मीद है, लेकिन अनाहत की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारतीय प्रशंसक आश्वस्त हैं। अगर अनाहत सेमीफाइनल में जीत दर्ज करती है तो वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लेंगी। याद रहे, अनाहत ने पिछले साल 2025 में इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार उनकी नजरें मेडल का रंग बदलकर गोल्ड करने पर हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अनाहत की सबसे बड़ी ताकत उनका फियरलेस खेल है। वो विपक्षी खिलाड़ी के नाम या देश से घबराती नहीं, बल्कि अपने खेल पर ध्यान देती है। 2028 ओलंपिक में स्क्वैश के शामिल होने के बाद से अनाहत की हर जीत को भविष्य की ओलंपिक तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अंटारियो से आ रही ये खबर निश्चित रूप से भारतीय खेलों के लिए एक बूस्टर डोज है। हम अनाहत को उनके आगामी मैच के लिए शुभकामना देते हैं।
1: और शुभकामनाएं हम और भी खिलाड़ियों को देंगे, क्योंकि मंच जो है खेलों का लगातार सजता ही रहता है और खिलाड़ी हर दिन अपने आप को साबित करने के लिए किसी न किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं। और अब जिन खिलाड़ियों को हमें शुभकामनाएं देनी है वो है हमारी भारतीय दल की अंडर 20 टीम, जो एथलेटिक्स के लिए अब अपना जो अभियान है वो शुरू करेगी 4 से 9 अगस्त तक। जी हाँ, विश्व एथलेटिक्स के सबसे बड़े जूनियर मंच पर भारत के युवा सितारे अपनी प्रतिभा का दम दिखाने के लिए तैयार हैं। 4 से 9 अगस्त 2026 तक अमेरिका के यूजीन में आयोजित होने वाली अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय दल में कुल 36 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 23 पुरुष और 23 महिला एथलीट शामिल हैं। ये खिलाड़ी 400 मीटर, 800 मीटर हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, रेस वॉक और तमाम तरह की जो रिले स्पर्धाएं हैं उनमें भारत के लिए चुनौती जो है वो पेश करने वाले हैं। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं भारतीय टीम पर। तो भारतीय जो पुरुष टीम है उसके अंदर सबसे पहले जो नाम है वो है मोहम्मद अशफाक, फिर इसके बाद है पीयूष राज, वेंकटरम रेड्डी, उविन आनंद, अमित कुमार, बसंत, अम्बरीश कार्तिकेन, शाहनवाज खान, जितिन अर्जुना, रोशन, उसके बाद धनुष राज, निश्चय, आशीष यादव, नितिन गुप्ता, आशु अंशु राजक, आदित्य तायल, निवित कृष्णा, नेल सम्राज, रुद्र सचिन, रंजीत कुमार, सबीर सैयद, नकुल प्रभु। जी हाँ, इसके बाद जो महिलाओं की टीम है यदि उनकी नामों की बात करें तो इसमें तनु चौधरी, पूजा, अंशु, अमन्नत कंबोज और पूनम आरती, भावना गणेश कुमार, काजल। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो नाम है वो है रुजुला, अनाया, ताहुरा, भूमिका और नागेश पिलप्पा का। तो ये जो कुल मिलाकर 36 खिलाड़ी हैं ये प्रतिनिधित्व करेंगे अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से। और अब चलते हैं अपने सहयोगी हेमंत के पास।
0: बिल्कुल कविता, बात करते हैं अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2026 के ग्रुप चरण का, जो है समापन हो चुका है। आखिरी लीग मुकाबले में दिल्ली दबंग ने पुणे जगुआर को हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। ग्रुप चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी अपनी जगह बनाई है। अब खिताबी जंग और भी रोमांचक होने वाली है। पहला सेमीफाइनल आज यानी 24 जुलाई को खेला जाएगा, जिसमें गोवा चैलेंजर्स का मुकाबला दिल्ली दबंग से होगा और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो ये कल खेला जाएगा 25 जुलाई को। इसमें यू मुंबा का सामना कोलकाता थंडर ब्लेड से होगा। ये मुकाबला भी शाम 7:30 बजे होगा। अब सभी की निगाह इन दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों पर होगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि कौन सी दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी और 2026 की चैंपियन बनने की ओर एक कदम और बढ़ाएंगी।
1: जी हाँ, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा पॉइंट टेबल्स भी बता दी चलूँ यूटीटी के बारे में, क्योंकि अब क्योंकि हमारे पास सेमीफाइनल की जो लिस्ट है वो तो आ ही गई है। तो टॉप फोर जो टीमें हैं वो तो अभी हेमंत ने बताई, लेकिन और जो टीमें हैं उनमें काफ़ी जो अंक है उसका अंतर बहुत ज़्यादा हो गया, और सबसे नीचे जो रही है वो रही है यहाँ पे यूपी की टीम, जिन्होंने सिर्फ 32 पॉइंट हासिल किए हैं। और जिस तरह अभी गोवा की बात की है, यहाँ पर गोवा की टीम के 56 पॉइंट हैं, इसके साथ कोलकाता की टीम के 49 पॉइंट हैं, मुंबई की टीम के 48 हैं, इसके साथ साथ डीडीटी के जो टीम है उसके जो पॉइंट हैं वो हैं 46। और इसी के साथ साथ ज्यादातर एक और खबर बता दूं आपको, भारत की अंडर 20 फुटबॉल टीम 2027 में होने वाले AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफायर की तैयारियों के तहत 3 और 6 अगस्त को सिंगापुर के खिलाफ 2 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। तो अब घड़ी की सुइयां हमें बिल्कुल अनुमति नहीं दे रही है इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की। तो मैं कविता शर्मा,
0: मैं हेमंत,
1: अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ चाहेंगे खेल खिलाड़ी से विदा। सुनते रहिए हमारा खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की 3री और 4थी लाइन को 1264 करोड़ रुपए

0: को लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said, they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
3: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
2: Spokesperson of the CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
4: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
2: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Talking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said the country also wants the same and there should be no obstruction to the passage of the bill. Mr. Rijiju said the government is taking important steps to safeguard the future of students. He added that if the opposition creates hurdles in parliamentary discussions on the issue, it will have to face the anger of the country's youth. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved third and fourth rail line of Bellary-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. It will increase the existing network of the Indian Railways by about 46 kilometres. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka. He also informed about the Cabinet's approval for Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or Bhavya Rasayan scheme for establishing three dedicated chemical parks in the country.
1: Andhra aur Karnataka ko jodne wale.
5: The Cabinet has approved the third and fourth

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: प्रियंका बहन, ये मौसम जो है काफ़ी जो है कि बदला बदला सा लग रहा है। नमी है और जो है कि पहले जैसी तपिश नहीं है, गर्मी नहीं है, तो ये काफ़ी कुछ कह रहा है हमारे किसान भाइयों से, कह रहा है हम सबसे, कह रहा है शहरी भाइयों से, सभी से कह रहा है। और
1: बिल्कुल
0: सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके इस प्रोग्राम में जिसमें आप बहुत सारी जानकारी देती हैं, बहुत सारे सुझाव देती हैं, और बड़ी चीज़ यह है कि मनोरंजन भी कराती हैं, जो कि हमारे खेती बाड़ी, किसान और हमारे ग्रामीण परिवेश, हमारी संस्कृति को बार बार जोड़ती और मजबूत करती है।
1: बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मानसून में, जहाँ मानसून में एक तरफ जहाँ जब बारिश होती है उसका हम आनंद लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी आ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के मद्देनज़र देखें तो डायरिया जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर
0: ये
1: देती है।
0: बहुत ही
1: और
0: पते की बात आपने कही।
1: बिल्कुल
0: ये तो हमारे जो है कि बहनों भाइयों के लिए एक बड़ी जानकारी आपने, वाकई ये जो डायरिया जो है इस मौसम में तेज़ी से फैलता है।
1: बिल्कुल
0: डायरिया के जो कह रहे हैं कि रोगाणु हैं ना, वो चूँकि मौसम में नमी है और तापमान भी है, तो वो तेज़ी से, ये उनके लिए बड़ा अनुकूल मौसम है, तो पनपने का मौका मिलता है। तो जो खाद्य पदार्थ हैं उनको तेज़ी से, उसमें जो है कि फंगस है, जो है कि जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो पैदा होते हैं और यही रोग कारक हैं। तो डायरिया के लिए जो स्पेशली जो वो होते हैं ना रोग कारक, वो मक्खियों से, मच्छरों से, ख़ास तौर से मक्खियों से, क्योंकि वो गंदगी बैठी, फिर वहाँ से ले आई, भोज्य पदार्थ भी बैठ गई, ठीक
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो
0: अब वो खाने पीने की चीज़ जब हम खा लेते हैं तो क्या है, वो कंटामिनेशन, वो जो है कि संदूषण जो है उसके ज़रिए से इन्फेक्शन अंदर जाता है
1: बिल्कुल
0: और डायरिया शुरू हो जाता है। डायरिया क्या है कि उल्टू उल्टी होना, दस्त होना, और फिर वो जो है कि धीरे धीरे एक तरह से कह लें कि बदन से पानी का और डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स हैं ज़रूरी, उनका जो है कि ह्रास होने लगता है।
1: बिल्कुल तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, अधिक से अधिक पानी पीजिए। और पानी भी ऐसा हो, या तो फिल्टर्ड हो या उबाला हुआ पानी हो जिसका आप सेवन करें, क्योंकि कहते हैं दूषित जल से बहुत जल्दी ये फैलता है। इसके साथ साथ जो भी आप खा रहे हैं उससे पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें, और जो सब्ज़ियाँ और फल आप खरीद के ला रहे हैं उन्हें भी अच्छी

0: से धोएं, और हो सके तो नमक के पानी से धोएं, तो उनमें और अधिक तरीके से वो शुद्ध हो जाती हैं और
1: जी
0: जो बैक्टीरिया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है।
1: प्रियंका बहन, आपने एक बहुत पते की बात बताई, और एक एक बात ये जो छूट गई वो ये कि खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक स्टोर करके ना रखें। ताज़ा खाना बनाया तो उसको ताज़ा खाने की कोशिश करें, बासी इस मौसम में जो है कि अवॉइड करें, ना ना खाएं, परहेज़ करें, वो फ़ायदे का रहेगा। नहीं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको संक्रमण लग जाए, डायरिया हो जाए।
0: और इसके साथ साथ कम मिर्च मसाला, और मेन जो बात है ना कि बाहर का तो बिल्कुल भी ना खाएं इस समय, और क्योंकि वो हमें नहीं पता कि किस समय उसे काटा गया है, कितनी देर पहले उसे बनाया गया है, तो ऐसे में
1: हाँ,
0: इन्फेक्शन की
1: वहाँ पे
0: संभावना बहुत
1: इन्फेक्शन की
0: ज़्यादा।
1: संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बड़े पते की जानकारी आपने दी प्रियंका बहन, और अब हम अपने ग्रामीण बहनों भाइयों को ले चलते हैं उस ओर जहाँ पे जाने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, वो है मनोरंजन। तो ले चलते हैं और सरवर नीर का ये किस्सा उनको सुनवाते हैं ना। अपरम पार तेरी माया,

0: ये ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में आप सुन रहे थे रागनी अपरंपार तेरी माया, सर्वन नीर का किस्सा, जिसमें राजा पूरा राजपाट अपना जो है कि हारने के बाद, ख़त्म होने के बाद रानी से बिछड़ जाते हैं और अपने मासूम बच्चों को लेके जाते हैं और दरिया में नदी उफना रही होती है, पार करने की कोशिश करते हैं और उसमें बिछड़ जाते हैं वो भी, बच्चे कहीं और अपने खुद कहीं और बच्चे रो रहे होते हैं, बड़ा मार्मिक दृश्य है। और फिर ये होता है कि वक्त इम्तहान लेने के बाद खुशियां भी देता है, वो घड़ी भी आती है जब सब मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही रागनी की बात और अब करते हैं खास बातचीत की और अपना रुख, क्योंकि ज़्यादातर

0: समझते हैं कि जो हमारी कृषि से होने वाली आय होती है वो आयकर के दायरे में नहीं आती है, टैक्स फ्री इनकम होती है, लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो कृषि से ही जुड़े रहते हैं, क्या वो भी इसके दायरे में आते हैं नहीं आते? इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है किसानों के लिए टैक्स संबंधी बुनियादी जानकारी। तो लेते हैं ये जानकारी।
1: समय समय पर हम आपको विभिन्न जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं, और आज जो विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो है किसानों के लिए टैक्स यानी कर की बेसिक जानकारी। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं चार्टेड अकाउंटेंट शिवशंकर शर्मा। शिवशंकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, हमारे किसान भाई काफी संदेह में रहते हैं कि वो के आय करके दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर कौन कौन सी उनकी जो फसल है या खेती की जो काम है वो कौन कौन से आय करके दायरे में आते हैं।
2: कृषि की जो आय है वो आयकर अधिनियम 1961 और धारा 21A में दी गई है, और उसके हिसाब से भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त कोई भी किराया या रेवेन्यू, ऐसी भूमि पर खेती करने से प्राप्त जो भी आय होगी, कृषि भूमि पर बने भवन से जो आय होगी उससे कोई रेंट आता है या कुछ इस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट होता है, बस शर्त यह होती है कि वो भवन खेती के काम से जुड़ा होना चाहिए। मुख्य शर्त यह है कि भूमि भारत में हो और उसका वास्तव में कार्य कृषि का हो। अगर मान लीजिए कि कोई खेत में भवन भी बना हुआ है, उसको आप किसी के अनाज के लिए रखने के लिए दे रहे हैं या खेती के लिए, उसको कई बार होता है बीजों को संरक्षित करने के लिए भी देते हैं, तो वो जो आय होगी वो कृषि आय।
1: शिवशंकर जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए यदि खेत में कोई फसल या सब्जी किसान भाई उगाता है और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके अन्य उत्पाद बनाता है, तो क्या वो आयकर के दायरे में आएंगे?
2: बिल्कुल, जब कृषि आय से वो दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है और उसकी स्थिति बदल जाती है तो वो निश्चित रूप से जो है कृषि आय से बाहर हो जाएगा और उस पर जो है नॉर्मल टैक्स जो होते हैं वो सब एप्लीकेबल हो जाएगा।
1: तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा हमारे किसान भाइयों को बताएं?
2: टैक्स नॉर्मल रेट से लगता है, जैसे कि अब आजकल दो रिजिम चल रहे हैं इनकम टैक्स में, एक पुराने वाला है एक नए वाला है। नए वाले में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, पुराने वाले में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजन को जो पुराने वाले में है उसमें 3 लाख की छूट है, और सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ज़्यादा है उनको 5 लाख की छूट है। तो इस प्रकार से आयु के हिसाब से ओल्ड रिजिम में है और नए रिजिम में 4 लाख तक की छूट है। और इसके कृषि से अगर कोई भी आय होती है और वो केवल कृषि से ही केवल आए तो टैक्स नहीं है।
1: कई बार हमारे किसान भाइयों को पता होता है कि भाई ये जो मैं उत्पाद बना रहा हूँ इस पर टैक्स लगेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कब मुझे टैक्स जमा करना है, कितना टैक्स जमा करना है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, इसमें अगर मैं बताना चाहूँगा कि क्या कृषि आय है और क्या नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसान भाई के लिए। कृषि आय जो होती है वो फसल की बिक्री से, बटाई का कोई हिस्सा आ रहा है उसको, या नर्सरी से उगाए गए पौधे। और कृषि आय जो नहीं है, जैसे कि कई लोग डेयरी का काम करते हैं जो कि कृषि आय नहीं है, मुर्गी पालन का करते हैं, मधुमक्खी पालन का करते हैं,
1: यानी खेती से जुड़े ये सब काम जो करते हैं।
2: हाँ जी, ये खेती से ही, और उनको ये लगता है कि इस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कृषि से आय नहीं मानी जाती है। और कृषि की जो एग्रीकल्चर लैंड के बेचने से कैपिटल गेन होता है वो भी कृषि आय में नहीं आता है।
1: तो जब एक बार ये तय हो जाता है कि ये कृषि आय में नहीं है, उस पर किस हिसाब से कब टैक्स जमा कराना चाहिए और कितना टैक्स जमा कराना चाहिए?
2: कृषि आय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हम पता लगा सकते हैं, जुताई हो रही हो, बुआई हो रही हो, सिंचाई हो रही हो, तो ये कृषि आय है। और जो जहाँ तक सवाल टैक्स का है, तो टैक्स के इनिजुअल्स की होती है, उनकी रिटर्न अभी जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट है, और उसमें इनकम भी उनकी इंक्लूड है। अगर केवल कृषि से आए है तो मैं राय यही दूंगा, अगर कृषि से अच्छी आय होती है उन्हें तो वो अपना रिटर्न 31 जुलाई से पहले जमा करवाएं।
1: और उसके लिए टैक्स का पहले जमा कराना पड़ता है या रिटर्न के साथ ही टैक्स जमा किया जाता है?
2: देखो, कृषि, अगर मैं किसान भाइयों की बात करूं और केवल कृषि से आई है तो टैक्स नहीं है, और अगर मैं ये देखता हूं कि उसको कहीं और मद से भी आए हैं, कि कई लोग होते हैं कि कृषि का काम भी कर रहे हैं, डेयरी का काम भी कर रहे हैं, तो उस अवस्था में उनका

0: आय होता है वो मिश्रित आय में आ जाता है, तो इसमें टैक्स निकालने का अलग तरीका होता है। तो उसमें पहले कृषि आय को लेते हैं, मैं एग्जाम्पल दे लेता हूँ इसमें
1: जी
0: कि मान लीजिए आपको कृषि से 10 लाख रुपए सालाना की आय है और गैर सरकारी कृषि से आय जो है वो 6 लाख रुपए की है,
1: जी
0: तो सबसे पहले 16 लाख पर टैक्स निकालेंगे। उसके बाद में जो ओल्ड रिजिम था, जो ओल्ड सिस्टम है उस

0: तो ये टैक्स पहले जमा कराना पड़ता है या रिटर्न के साथ ही करा सकते हैं?
1: रिटर्न के साथ ही करा सकते हैं। वैसे जो है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 15 जून को पहला एडवांस टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद में जो है 3 महीने बाद फिर जमा होता है, फिर 3 महीने बाद, और फिर 31 मार्च को अगर कोई बाकी रह गया है तो वहाँ पर जमा करवा दें, उससे इंटरेस्ट नहीं लगता है।
0: जी अच्छा शिवशंकर जी, यहाँ आपसे जानना चाहूंगा कि एक बार जैसे टैक्स जमा करा दिया तो रिटर्न क्या दोनों किसान भाइयों को भरनी पड़ती है? जो हमारे किसान भाई खाली खेती कर रहे हैं या जो हमारे दूसरे भाई खेती के साथ साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं?
1: तो किसानों को रिटर्न भरना जो है वो ज़रूरी होता है, वैसे तो कंपलसरी नहीं है उनके लिए, लेकिन उनके लिए फ़ायदा यह है कि जैसे बैंक से ऋण लेना है, कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना है, किसान क्रेडिट कार्ड चलते हैं
0: जी
1: आजकल, और फिर क्या होता है कि कृषि में मुख्यतः कैश का समावेश होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ चालू कर देता है,
0: जी
1: तो उसको रोकने के लिए मेरा जो सलाह यह है कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दे, जिससे कि उससे किसी प्रकार की उसको नोटिस या परेशानी ना आए।
0: और रिटर्न भरने के साथ साथ उसे अपने पास क्या-क्या दस्तावेज रखने चाहिए जिससे कि आगे जाके उसको दिक्कत ना हो?
1: उसको अपने कृषि से संबंधित जो बिक्री होती है उसका दस्तावेज रखना पड़ेगा, कृषि से संबंधित जितने व्यय किए हैं उसने उसकी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी उसको, और जैसे वो इंटरेस्ट भी देते हैं और प्लस जो वहाँ पर काम करवाते हैं कृषि में, बीज का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, और भी खर्चे होते हैं, उनका जो है वाउचर वगैरह बनवा के और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। जैसे अड़तियों से बेचते हैं तो अड़तियों की जो रसीद होती है वो, प्लस जब वो कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसका रिकॉर्ड अपने पास में रखना चाहिए।
0: और रिटर्न जमा समय किन किन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है और किस तरह से रिटर्न जमा कर सकते हैं?
1: ये रिटर्न जो है इसी तरीके से जाती है, और दस्तावेज जो मैंने अभी बताए वही लगेंगे उनको, और इसके अलावा जो है कोई खास दस्तावेज उनको रखने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल उनको ये होना चाहिए कि वो अपनी आय को स्पष्ट रूप से घोषित कर पाए, उससे संबंधित सभी दस्तावेज उनके पास होने चाहिए।
0: इसके बाद अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए कोई कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन पे उसको लीज पे भी दे देते हैं, किराए पे भी दे देते हैं, तो वो जो इनकम होगी वो इनकम क्या उस टैक्स के दायरे में आएगी?
1: नहीं, वो भी टैक्स के दायरे में नहीं आएगी, वो भी कृषि भूमि से आय मानी जाएगी, और उसके लिए उनको अपने कृषि का रिकॉर्ड दिखाना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई उनके पास इतनी ज़मीन है, और वो रिटर्न एग्रीमेंट जिसके साथ उन्होंने किया है उसके साथ में एग्रीमेंट।
0: इसके अलावा और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को टैक्स से संबंधित?
1: मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 60% आय वो कृषि से मानी जाती है और 40% आय जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है और वो बिजनेस के दायरे में चली जाती है, तो इस प्रकार के जो किसान भाई हैं हमारे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और किसान भाई यही सोचते हैं कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में अच्छी खासी इनकम है उनको अपना आयकर रिटर्न समय पे जमा करना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स की परेशानी से बच सकें।
0: शर्मा जी, रिटर्न के साथ साथ और ये आयकर के साथ साथ जीएसटी पर भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा संदेह रहता है। ये जीएसटी और इनकम टैक्स में क्या अंतर है? क्या किसान भाइयों पर ये भी लागू होती है?
1: ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उन पर जीएसटी लागू नहीं होता है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग करके कोई भी चीज़ बेचते हैं वो, कि गेहूं आया, गेहूं से बिस्किट बन गया, बिस्किट जो है जीएसटी के दायरे में चला जाएगा। इसी प्रकार से जब प्रोडक्ट को बदल देते हैं, प्रोडक्ट का शेप बदल जाता है, तो वो सब जो है इनकम टैक्स के दायरे में आता है।
0: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: किसान भाई इस देश के अन्नदाता हैं, कानून की उनको जानकारी होनी चाहिए और उचित जानकारी लेते रहें समय समय पर, और आपके माध्यम से जैसे कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस माध्यम की जो जानकारी है उसको कहीं रिकॉर्ड करके अपने पास रखें, क्योंकि सुनने के बाद में तो भूल जाते हैं, तो यही उनसे निवेदन है कि वो अपने पास में इसको संजो के रखें, और जब कभी भी उनको कोई परेशानी आती है तो इसको सुने।
0: तो किसान बहन भाइयों, ये तो शिवशंकर शर्मा जी ने बताया कि भी कि कौन कौन कौन से किसान टैक्स के दायरे में आते हैं, इसके अलावा कौन सी जो आय है वो कृषि आय में आती है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपने अपने टैक्स जमा करने हैं, अपने रिटर्न भरनी है। शिवशंकर जी, आज आप यहाँ आए, हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

0: तो अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए टैक्स संबंधी बुनियादी जानकारी। सुनील कुमार बातचीत कर रहे थे शिव शंकर शर्मा से। उन्होंने ये बताया कि कृषि की सारी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, लेकिन जब कृषि उत्पादों को बदल के बेचा जाता है, गेहूं पैदा हुआ, आटा बनाया, लेकिन वो भी अगर आटा सादे तरीके से बेचा जा रहा है तो वो तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर ब्रांडेड बना दिया, पैकेट बना दिया, ब्रांड क्रिएट कर लिया, तो हमारे किसान भाइयों को भी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बुनियादी जानकारी, ये फ़र्क रहा। और टैक्स हम सभी को देना चाहिए, टैक्स फाइल करने का बड़ा फ़ायदा है।
1: और देखिए, अगर हम बात करें योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता, विशेषकर गरीबी और मध्यम वर्ग में जो लोग आते हैं, उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को 50 से 90% तक कम कीमतों पर उपलब्ध कराना, और यही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप इन दवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके
0: जी
1: साथ
0: प्रियंका
1: साथ
0: बहन, बहुत पते की बात आपने बताई, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ दवाई जो है ये बुनियादी चीज़ है, और हर मौसम में हर वक्त लोगों को दवा की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन हमारे गरीब भाई जो हैं, किसान भाई जो हैं, या जिनकी आय कम है ना, उनका भी ख्याल रखा गया है। इसके लिए सरकार ने ख़ास स्कीम के तहत जन औषधि केंद्र खोले हैं देश भर में। करीब 18-20 हज़ार जो है कि जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। और बड़ी चीज़ यह है कि इनकी गिनती जो है, तादाद लगातार बढ़ाई भी जा रही है। और जो है कि वहाँ पे जाके आप सस्ती दवाएं, जैसा कि बताया प्रियंका बहन ने, कि पेटेंट कंपनियों के बड़े जो है कि दवाइयाँ होती हैं जो महंगी होती हैं, उनको सरकार ने जेनरिक उस दायरे में ला के 50% से 90% तक कम दाम पे उपलब्ध कराने का काम कर रही है।
1: और आप अपने नज़दीकी केंद्र के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप जन औषधि सुगम ऐप पर जाके कहाँ कहाँ पर ये केंद्र स्थापित है उनके बारे में आप जान सकते हैं।
0: बिल्कुल बहन, तो अब एक काम करते हैं कि अपने बहनों भाइयों को एक बार फिर से उनका मनोरंजन कराते हैं और ले चलते हैं

0: ये आप सुन रहे थे रागिनी किस्सा हीर रांझा, योगेंद्र निमचाना की आवाज़ में। तो बहनों भाइयों, अब वक्त कहता है कि हम आपसे इजाज़त लें। इसी के साथ सभी ग्रामीण बहनों भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्य

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यान पूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल रेलखंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इस पर 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में आज भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी।

0: दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इससे पहले रवि वीरा वेंकट बुद्धिगीना और अली इमाम ने पैरा तैराकी के S13 वर्ग के 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के फाइनल में अपना अपना स्थान पक्का किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले हमारे तमाम ग्रामीण किसान भाइयों बहनों को राम राम।
1: देखिए शाहिद भाई, हम बात कर रहे थे कि बारिश का मौसम है और उस समय कुछ ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कि हमने डायरिया की बात की थी कि ऐसे में उल्टी दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसे खान पान को अपने रूटीन में शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और जो पचाने में भी आसान हो, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए बहन, इसमें क्या है ना कि इस सीज़न में और हर सीज़न में वैसे भी फल सब्जियां और मिलेट्स जो होती ना, जो हमारा थीम भी है कि लोक संगीत के साथ हम इनकी भी बातें करते हैं, तो आज सिर्फ बातें नहीं हैं, अमल की भी जो है कि ज़रूरत है। तो फल सब्जियां जो है और मिलेट्स यानी मोटा अनाज जो है, जो हमारी संस्कृति का कह लें कि उसकी पहचान भी रही है ना, तो जब उसको खाया जाता था, जब वो चलन में था अच्छे, तो लोगों को दवाइयाँ ज़िंदगी में, कोई लोग कहते थे कि मैं तो ज़िंदगी में एक बार दवाई खाई थी, वो मेरे दादा तो दवाई खाते ही नहीं थे, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। हकीकत में वो इम्यूनिटी जो है ना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाती हैं। तो आपने बताया कि फल सब्ज़ियाँ जो हैं आज की के दौर में जो है कि अभी देखा जाए तो सीज़न जिसको हम कह सकते हैं दौर के हिसाब से सीज़न, तो ये जो मौसम है, हर मौसम के लिहाज से जो प्रकृति है, हर मौसम के लिहाज से, हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो जहाँ पे है उसके हिसाब से वो उत्पाद देती है, ठीक है,
1: बिल्कुल
0: उनका
1: बिल्कुल
0: जो है कि सेवन करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अगर सब्जियों की बात करें तो बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे घिया है, तोरई है, करेला है, इन सब में भरपूर मात्रा में जो पोषक
0: बिल्कुल
1: तत्व
0: सही कहा
1: होते
0: आपने,
1: हैं।
0: इस सीज़न की ये पहचान है, बेल वाली जो सब्जियां हैं, जो प्रतान वाली सब्जियां हैं, इनमें ये इसी मौसम में होती हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि इनके अंदर आपको विटामिन डी, उसके अलावा जो है कि कई तरह के मिनरल्स जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है इस सीज़न में ख़ास तौर से, वो प्रचुर मात्रा में मिलती हैं।
1: बिल्कुल, तो ज़रूर आप मौसम के अनुसार अपने खान पान का चयन करें। और जामुन इस समय बाज़ार में बहुत है, आसानी से आपको मिल जाएगी और इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अधिक है। इसमें हमारा जो ब्लड शुगर होता है कंट्रोल रहता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जामुन का सेवन भी आप बहुत कीजिए क्योंकि ये एक औषधीय फल है जिसके
0: जी
1: खाने में
0: हाँ,
1: भरपूर
0: आपने बड़ी बात
1: लाभ
0: बताई।
1: आपको मिल सकते हैं। और अगर हम अभी हमारा कृषि जगत कार्यक्रम जो होता है उसमें हम अपने किसान भाइयों के लिए विशेष जानकारी भी लेकर आते हैं। इफ़को के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं, ये एक ऐसा संस्थान है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए न सिर्फ कम दाम पर बल्कि उच्च कोटि के जो उत्पाद हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाता है। तो सुनते हैं ये बातचीत जिसका विषय है किसानों के लिए इफ़को एमसी की भूमिका। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, ये तो आप जानते हैं इफ़को किसानों की संस्था है, और भाई इफ़को किसानों की संस्था के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं एक सहयोगी संस्था है इफ़को एमसी, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देती है, प्रदान करती है, और ये उत्पाद हैं जो भी कोई बीमारी लगती है किसानों तक पहुँचाती है। क्या कुछ काम चल रहा है और एक भारत सरकार का अभियान चला है खेती बचाओ, इसमें इफ़को एमसी की क्या भूमिका, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इफ़को एमसी के प्रबंध निदेशक मनोज वार्ष्णेय जी। मनोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे खेती बचाओ अभियान में आप उनको भी जागरूक कर सकें?
3: नमस्कार किसान भाइयों, इफ़को मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम जिसको इफ़को एमसी के नाम से जाना जाता है, कृषि रसायनों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्था ने ऑलरेडी पिछले साल 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए और अब इस साल व्यापार में कार्यरत है। आपके इस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि इफ़को एमसी के कुछ विषय जिन पे काम करता है और उनको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए तो मैं सिर्फ चार शब्दों में इफ़को एमसी की भूमिका को आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले है सही दवा। सही दवा मतलब आपके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए जिन कृषि रसायनों की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी उच्च कोटि के कृषि रसायनों को आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करती है इफ़को एमसी। सही दवा के बाद दूसरा है सही दाम। बाज़ार में जितने भी कीटनाशक या कृषि रसायन मिलते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से दाम चार्ज किए जाते हैं, और इफ़को एमसी का जो पूरा उद्देश्य है आपको सही दवा सही दाम पे उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इसमें सबसे अगर खास बात देखा जाए तो सबसे ये है कि इफको एमसी के सारे उत्पाद फिक्स्ड एमआरपी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिक्स्ड एमआरपी से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। जो दाम उसके ऊपर अंकित है उसी दाम को आपको दुकानदार को या सहकारी संस्था को पे करना है, तो जिससे आपको सही दवा सही दाम पर उपलब्ध होती है। साथ में तीसरा चीज़ है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता मतलब जितने भी कृषि रसायन हैं इफ़्को एमसी की क्वालिटी पॉलिसी है। तो अगर हम इन तीन चीज़ों को देखा जाए, सही दवा सही दाम उच्च गुणवत्ता, ये तीन ध्येय हैं इफ़्को एमसी के किसान को और आपकी खेती के संरक्षण को, जो भी आपकी मेहनत है उस मेहनत को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। और इन सब के साथ एक और अनूठा पैगाम है इफ़्को एमसी का, किसान सुरक्षा। इफ़्को एमसी के कोई भी उत्पाद लेते हैं आप, उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। 16,000 रुपये तक के उत्पाद इफ़्को एमसी के अगर आप खरीदता है कोई एक किसान, तो उन उत्पाद खरीदने पे करीब 1,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा जो है किसान को मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत है आपके पास, आपके पास एक बिल होना चाहिए और इसकी जो समय सीमा है पूरा 1 साल है। 1 साल में आप टोटल 16,000 रुपये के अगर उत्पाद खरीदते हैं 1,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इन सब आधारों के ऊपर इफ़्को एमसी खड़ा है और हमें बहुत हर्ष है कि इफ़्को एमसी ने पिछले साल 2025-26 में रिकॉर्ड टर्नओवर किया था। तो इसमें आप सब लोगों का प्यार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार इफ़्को एमसी को इतना पसंद करने के लिए। रही बात खेती बचाओ अभियान, जैसे इस समय ग्लोबल वॉर सिचुएशन की वजह से कृषि रसायनों के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो हम अपनी कंपनी की तरफ से प्रयास कर रहे हैं जैसे भी करके आपके उत्पादन कॉस्ट को, आपकी खेती की लागत को कैसे कम रख सकें। तो इसमें हमारा जो प्रयास है, हम समय से कृषि रसायनों को या उनके टेक्निकल्स को या फॉर्मूलेशन प्रोडक्ट को टाइमली परचेज कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में आपके कृषि उत्पादन में कोई भी तरीके की समस्या ना आए। तो ये ऐसा इफ़्को एमसी का इस समय प्रयास चल रहा है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है कि आज के समय में जैविक उत्पादों की बहुत ज़रूरत आ रही है। मार्केट इंक्रीज हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जैविक उत्पाद मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इफ़्को एमसी ने भी अपने जैविक उत्पाद बाजार में उतारे हैं और जिनका नाम है जेन नेक्सा। जेन मतलब बैलेंस और नेक्सा मतलब नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो जेनेक्सा श्रृंखला को बाजार में उपलब्ध कराया है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जेनेक्सा सीरीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिससे कृषि रसायनों के साथ साथ जैविक उत्पादों का, जिसको बोलते हैं बायो इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन की, इस कॉन्सेप्ट को जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिला सकें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि जेनेक्सा श्रृंखला के उत्पादों का भी प्रयोग करें अपनी खेती में। इसी में एक उत्पाद है माइकोजेन। माइकोजेन

0: जो एक बहुत ही उच्च कोटि का माइकोराइजा प्रोडक्ट है। हमें पता है आज के समय में खादों की उपलब्धता में यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के चैलेंज हैं, तो अपनी फसल के पोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकोजन जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से माइकोराइजा जड़ों के ऊपर एक बाहरी और एंडोमाइकोराइजा डेवलप होने की वजह से आपके पास फ़ायदा क्या होगा कि कम पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगा और साथ में आपके उत्पादन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव देगा। तो मुझे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन ऐसे जैविक उत्पादों का आप इस्तेमाल करें और जिससे खाद की रहने वाले संकट को या खाद की कमी या उसकी कम उपलब्धता को भी आप एड्रेस कर सकें। रही बात आने वाले समय में किस तरीके का प्रोडक्शन, मॉनसून बहुत, जो IMD की फोरकास्ट के हिसाब से कि मॉनसून कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सचेत रहें और सही तकनीक से अपने कृषि और अपने फसल उत्पादन को करें। और अगर हम सचेतता के साथ और सही ज्ञान के साथ अपना फसल उत्पादन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से अपने, एक तो फसल उत्पादन को खोएंगे नहीं और खेती से होने वाली आपकी आय किसी भी तरीके से कम नहीं होगी।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि सही तकनीक और सही समय पर जानकारी के द्वारा आप अपनी खेती को बचाएंगे, खेती में काम करेंगे तो जरूर आप खेती के साथ साथ आप अपने उत्पादन को भी बरकरार बनाए रखेंगे। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेत बचाओ अभियान में इफको एमसी की भूमिका। इस पर बातचीत कर रहे थे मनोज वाष्णेय और जानकारी दे रहे थे इफको एमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज वाष्णेय। तो किसान बहनों भाइयों, अब आइए आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर से ये रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये किसान गीत। और सचमुच हमारे किसान भाई हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत से अन्न उगाते हैं और हम तक वो अन्न पहुँचता है, तो वाकई ये तारीफ़ के काबिल ही काम
1: सही
0: है।
1: ब्रह्मपाल
0: बिल्कुल
1: नागर ने सच कहा कि किसान हमारा दुनिया में
0: अन्नदाता
1: दूसरे
0: है।
1: दर्जे का
0: बिल्कुल
1: भगवान है। वो जो है कि अनाज भी पैदा करता है, पेट भी भरता है, दवाइयों के लिए जो है कि औषधियों की जो वनस्पतियां हैं उनको भी पैदा करता है और कई तरह से पोषण देता है, तो
0: बिल्कुल
1: वो भगवान हुआ।
0: बिल्कुल। और देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना कि अगर हम बात करें तो एक ऐसी योजना है जो कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को जागरूक करने में लगी है। इसके तहत उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैविक उत्पाद होते हैं उनके रेट भी बाज़ार में अच्छे मिलते हैं। तो
1: जी
0: अगर
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियंका बहन। दरअसल ये जो है कि दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना जो है ना, इसमें जो है कि दरअसल जो कृषि जो है कि ग्रेजुएट्स हैं, BSc AG करने वाले ऐसे लोगों को जो है कि इनकी मदद ली जाती है और इनको साथ मिला के उन्नत तकनीक जो है, ठीक है, जैविक तकनीक मतलब केमिकल रहित जैविक खाद, जैविक तरीके से पारंपरिक और आधुनिक जो है कि ट्रीटमेंट के साथ जो है कि कृषि पैदावार करना, ताकि वो गुणवत्तापूर्ण हो, अधिक उत्पाद मिले और बड़ी चीज़ यह है कि उसकी ऊंची कीमत मिले। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये कि हमारे किसान भाइयों बहनों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पैदा करें और कैसे इसकी मार्केटिंग हो उस लेवल तक, मतलब इसको कह सकते हैं कि किसान एवं ग्रामीण उद्यमिता, ये स्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये बड़े पते
0: बिल्कुल
1: का
0: बिल्कुल।
1: बहुत ही।
0: इसमें मुख्य रूप से जो बच्चे इसमें डिग्री ले रहे हैं, जो स्नातक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ डिग्री न लेके उनको ऐसा कौशल विकास दिया जा रहा है जिससे कि वो उद्यमिता की तरफ जाएं और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में आगे उनको रोज़गार की संभावना खुद भी मिले और दूसरों को भी वो रोज़गार देने वाले बने।
1: ये तो है ही, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसान बहन भाई जो भी हैं उनको ये पूरी एंड टू एंड, मतलब कैसे बीज बोया जाए, कैसे खेत तैयार किया जाए, कैसे कटाई की जाए और कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, मतलब बीज बोने से लेके पैसा हाथ में पाने तक पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। ये उसी की का प्रशिक्षण, उसी के मतलब उद्यमिता विकास है एक तरह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और देखिए कल शनिवार है और शनिवार को आपको याद दिला दें कि हमारा लोक संगीतों पर आधारित फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे श्रोता हम तक अपनी पसंद के गीत और कलाकारों को पहुंचाते हैं और हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने संबंधी फ़ोन नंबर और रिकॉर्डिंग का टाइम भी बताया जाएगा, तो 6:30 पर सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये उपदेश।

0: उमरिया मुफ्त में हुई, ये उपदेश आप सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में। तो ग्रामीण किसान बहनों भाइयों, इसी के साथ आपसे हम लेते हैं इजाज़त। आप सभी को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं कुछ गीत गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत चंद खूबसूरत सी गजलों का। ये पहली गजल आप सभी के नाम चंदन दास की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गजल और कव्वाली के अंतर्गत खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुने प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए दो अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंजूरी दी गई। विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला एक विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
5: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
4: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की वार्ता करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
6: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
4: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कड़े विधेयक को लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद भवन परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
4: दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सवेरे 7:30 बजे से जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था उनमें से दो

0: व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज श्री वैष्णव ने कहा कि ये नीति दर्शकों के मापन में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करती है।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 ने 16 जनवरी 2014 के भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का स्थान ले लिया है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें नेटवर्थ मानदंड को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए करना, कनेक्टेड टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनलों सहित कई प्लेटफॉर्म पर प्रौद्योगिकी तटस्थ दर्शक मापन और मीटर वाले घरों की संख्या को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 करके नमूना आकार में वृद्धि करना शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि निर्धारित सुरक्षा उपायों में क्रॉस होल्डिंग प्रतिबंध, एजेंसी के बोर्ड में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशकों की अनिवार्यता, हितों के टकराव को जन्म देने वाली परामर्श या सलाहकार गतिविधियों पर रोक, सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकताएं, ऑडिट और पारदर्शिता दायित्व शामिल है ताकि रेटिंग एजेंसियों की कार्यात्मक और परिचालन स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में आज श्री प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट के उपयोग और डिजिटल पहुंच में तेजी से विस्तार के साथ बच्चों का अनुचित सामग्री और अन्य ऑनलाइन जोखिम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के समस्याओं को लेकर बैठक की। बैठक में लघु उद्योग भारती, उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत करने और उन्हें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की प्रगति के लिए उद्योगों का विकास अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि गाजीपुर ड्रेन में वर्षों से भारी मात्रा में गाद जमा है, जिससे इसकी पानी ले जाने की क्षमता में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नालों में इसी तरह की आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे गाद निकालने का काम तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने आज विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए भंडार रखने की अनुमति देने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि इस प्रावधान को उसके मूल उद्देश्य और भावना के अनुरूप लागू किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और नीति के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव भी दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज नीट यूजी 2026 के शीर्ष 11 विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प नए भारत की आकांक्षाओं का सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि नीट यूजी 2026 में 11,20,000 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज एमपी लीड फेलोशिप के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ये फेलोशिप राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े ने युवाओं को सार्वजनिक नीति, सुशासन और संसदीय प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए शुरू की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इन युवा प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह, नए विचार और समर्पण भाव अगली पीढ़ी के नेतृत्व पर देश को विश्वास को और मजबूत करते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने

0: परामर्श दिया है। एक रिपोर्ट।
1: यातायात पुलिस ने ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग, खाद्य वितरण, लॉजिस्टिक्स तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिचालन को आवश्यकतानुसार विनियमित करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल है, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। यातायात पुलिस ने सभी संबंधित पक्षों से निषेधाज्ञा प्रभावी रहने तक लागू प्रतिबंधों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने बताया कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी के विभिन्न प्रमुख मार्गों और प्रवेश स्थलों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ समितियों को आवश्यक अनुमतियों और सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के साथ समन्वय मजबूत रखा जाए और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविरों में 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन, PCR तैनाती और दुर्घटना रोकथाम से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राजधानी में आने वाला प्रत्येक शिव भक्त स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और अपनत्व से घिरा हुआ महसूस करे। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली नगर निगम के महापौर कार्यालय को आज सवेरे एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महापौर कार्यालय ने बताया कि आज सवेरे 10:23 पर एक अज्ञात स्रोत से ईमेल के माध्यम से ये धमकी मिली। धमकी मिलते ही बिना किसी विलंब के संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया। महापौर कार्यालय ने बताया कि जांच के दौरान कार्यालय के प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र, प्रवेश और निकास द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन जांच की गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर अन्य उपकरणों में लगाते थे और UPI सक्रिय कर खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद वे धोखाधड़ी कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों के पास से 10,000 रुपये नकद के साथ 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। आज देश भर में आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। इस दौरान आयकर विभाग के कार्य और उसके योगदान का स्मरण किया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई और दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राज्य सरकार राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गाजीपुर ड्रेन की सफाई के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है, ठीक लीजिए 8:00 हुए हैं 16 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ प्यारे से फिल्मी गीत, जिसमें आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का हम आशा जी के साथ, भूपेंद्र की आवाज़ के साथ, और गीत किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत मालिका कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुने ये खूबसूरत से फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हम समाचार, पहले हिंदी अंग्रेजी और उसके बाद

0: उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से। मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद

राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमा बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्र

0: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh meet

0: और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखना अंदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सैनियम ने चीन में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज एक बिल के मुसविदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सज़ा को यकीनी बनाने की बात की गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई और बिल के मुसविदे को मंजूरी दी गई। ज़राए ने आकाशवाणी के खबरों के शोबे को बताया कि मुजवज़ा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैसेज के जरिए वज़ीर आज़म मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये NTA की मुकम्मल सफाई का एक हिस्सा है जो पेपर लीक के मामलों में तनाज़े का शिकार रही है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इम्तिहानात में धांधलियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के लिए अहम इकदाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अपोजिशन इस मामले पर पार्लिमानी बहस में रखना अंदाजी करती है तो उसे मुल्क के नौजवानों के गुस्से का सामना करना होगा। मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CJP वफद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि उन्होंने इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात से मुतालिक CJP के मुतालबात को इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ सुना। जनाब नड्डा ने कहा कि CJP ने 3 अहम मुतालबात पेश किए हैं और इम्तिहानात के पर्चों के लीक को ख़त्म करने के लिए कुछ इस्लाहात की सिफारिश भी की है। जनाब नड्डा ने मजीद बताया कि हुकूमत कल वफद के साथ एक बार फिर बातचीत करेगी।
1: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे उस वीडियो को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव रंजन ने दावा किया है कि वजीर दाखला अमित शाह ने जारी मुजाहिरों को ख़त्म करने के लिए उन्हें कार्रवाई करने की हिदायत दी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि ये वीडियो जाली और AI की मदद से बनाया गया है। यूनिट ने मजीद कहा कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। PIB ने लोगों से अपील की है कि वो मुसद्दिका मालूमात के लिए सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर ही इन्हिसार करें। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बलारी गुंटकल सेक्शन की 3री और 4थी रेलवे लाइन की मंजूरी दी है जिस पर कुल 1,264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तामीर से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 46 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने बताया कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान कनेक्टिविटी में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भाव्य रसायन स्कीम की काबीना की जानिब से मंजूरी की भी इत्तला दी जिसके तहत मुल्क में 3 मखसूस केमिकल्स पार्क्स कायम किए जाएंगे।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत

0: इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: भाव्य रसायन स्कीम पर 3030 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस स्कीम पर 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल की मुद्दत के लिए अमल किया जाएगा। जनाब वैष्णु ने बताया कि मरकज हर पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया कराएगा। ये 1000 करोड़ रुपए मुतालिका रियासती सरकार की जानिब से 500 करोड़ रुपए की कम अज़ कम रकम लगाए जाने की सूरत में मुहैया कराए जाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामलों पर आज लगातार 5वें दिन शोरगुल के बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आज लगातार 5वें दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के बाद रखना पड़ा। इसके साथ ही इजलास का पहला हफ्ता अपने अख्ताम को पहुँचा और कोई ख़ास काम इस दौरान नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। शोरगुल के दौरान दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने राज्यसभा में आज कौमी तज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में आज करगिल जंग के शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से आयद मुख्तलिफ शराइत की वजह से बहस नहीं हो सकी। सदर नशीं और हुकूमत की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन अराकीन दोनों ऐवानों में शोरगुल करते रहे। रखना अंदाजी का यह सिलसिला जारी रहने के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर पर वुजरा की मरकजी काबीना से रवनीत सिंह के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वो रेलवे और गजा को डिब्बा बंद किए जाने की सनतों के महकमे के वजीर ममलिकत थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारिस्त में रोमानिया के वजीर आजम इली बोलोजान से मुलाकात की और भारत रोमानिया शराकत दारी में पेशरफ के मामले में समर आवर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और तिजारत सरमायाकारी साफ तवानाई कनेक्टिविटी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। दोनों लीडरों ने बाहमी मफादात के शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने के सिलसिले में भी बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म की तौसीख की। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितिन प्रसाद ने कहा है कि हुकूमत एक खुले, महफूज, काबिले भरोसा और ज़िम्मेदार इंटरनेट को सभी इस्तेमाल कुनिंदगान बिलखसूस बच्चों के लिए यकीनी बनाने के तहीं पुरअज़म है। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि अब जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल और डिजिटल रसाई तेज़ रफ्तारी के साथ वसत इख्तियार कर रही है, ऐसे में नामुनासिब कंटेंट और दीगर ऑनलाइन खतरात तक बच्चों की रसाई का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के नुकसानदेह असरात से बच्चों और नाबालिगों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस तरह की इत्तलाआत को आम होने की रोकथाम के सिलसिले में कई इकदामात किए हैं। नई दिल्ली ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के साथ सिंध आबी मुआहिदा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक वो सरहद पार दहशतगर्दी से दस्तबरदार नहीं हो जाता। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया कि भारत जानबूझकर पड़ोसी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। चीन के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी अंदाज में चीन की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं की और इस बारे में भारत का रवैया हमेशा यकसां रहा है। उन्होंने कहा कि सालमियत के मामले तो दरअसल भारत को उठाने चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि चीन साल 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से काबिज है जिन पर भारत के हक को चीन तक ने सरकारी तौर पर तस्लीम किया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार खत्म होने से 2 साल कबल ही खराबी सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है।

0: पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वो नए सदर के मुंतखब होने तक कारगुजार सदर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे। साबिक जज और साल 1971 की बांग्लादेश की जंग आज़ादी के सिपाही रहे शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में सदर बने थे। शदीद बारिश ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। आज शुमाली गुजरात में शदीद बारिश हुई। पाटन ज़िले के राधनपुर में 9 इंच से ज़्यादा, जबकि संतलपुर में भी 9 इंच के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वज़ीर आला हर्ष सांघवी जनूबी गुजरात में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
1: गुजरात के सैलाब से मुतासर अजला नौसारी, सूरत और वलसार में राहत और बचाव का काम जारी है। नौसारी में NDRF, SDRF, फौज और मकामी गोताखोरों ने एक मुश्तरक ऑपरेशन में सैलाब ज़दा इलाके से आज 14,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अहमदाबाद में वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया और वज़ीर सेहत ऋषिकेश पटेल के साथ एक आला सतह की मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया और अम्बली और घुमा रिहायशी सोसाइटियों में भरे पानी को जल्द अज जल्द निकालने की हिदायत जारी की। बिलमोरा रेल सेक्शन के रोड और विरंगम स्टेशनों पर पानी भर जाने से मगरबी रेलवे की खिदमात आज भी शदीद तौर पर मुतासर हुई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर आज मुतद्दिद रेलगाड़ियों को मनसूख करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने कल भी पूरी रियासत में शदीद बारिश की पेशगोई की है और 7 अजला में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: आंध्र प्रदेश के आबपाशी महकमे ने कहा है कि एल नीनो असर की वजह से रियासत में बारिश में काफ़ी कमी आई है, जिससे कृष्णा नदी में आने वाले पानी का बहाव कम हो गया है। विजयवाड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश आबपाशी महकमे के इंजीनियर इन चीफ के नरसिम्हा मूर्ति ने कहा कि रियासत में 51% कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कृष्णा डेल्टा में मामूल से 49% कम बारिश का इंदराज हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में आज दोपहर उदयपुर किल्लर रोड पर काडू नाला के पास पहाड़ी से गिरे एक बड़े पत्थर की जद में आकर एक गाड़ी दब गई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर और ज़िला डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन मोहतरमा किरण भड़ाना ने बताया कि महलूकीन की शिनाख्त का अमल जारी है और बाज़ाब्ता तस्दीक के बाद तफसीली मालूमात फराहम की जाएंगी। शूटिंग में भारत की सैनियम ने चीन में ISSF आलमी कप में ख्वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। 22 बरस की निशानेबाज सैनियम ने फाइनल में 243.4 पॉइंट स्कोर किए और इस तरह मजबूत बैनुल अक्वामी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों के दूसरे दिन भारत के श्री हरि नटराज मर्दों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। नटराज ने हीट्स के दौरान 25 सेकंड और 52 मिली सेकंड की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे 16 तैराकों में 14वां मकाम हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबले आज रात होंगे। इससे पहले भारत के रवि वीरा वेंकट बुडगीना और अली इमाम मर्दों के S13 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा तैराकी मुकाबले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज़ किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसव्वदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वज़रा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के वफ से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है, ताकि सनअती तरक्की को फ़रोग दिया जा सके। इसी के साथ खबरों का एक बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
2: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। उधर चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, National

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम माटी के रंग। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री जितेंद्र कुमार झा के मैथिली गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं श्री गुलाम मुस्तफा खां का राग श्याम कल्याण में गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आपने श्री गुलाम मुस्तफा खां का राग श्याम कल्याण में गायन सुना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11 बजने को लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी

0: मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examinations.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:10 हुए हैं और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लेकर कार्यक्रम फिल्म संकेत आज आपके दो दोस्त फिर आपके साथ जुड़े हैं। आज मैं हूं आपके साथ सविता और मेरे साथ हैं
1: मैं हूं आपकी अपनी दोस्त वंदना।
0: तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन, और बिना देर किए हम पहले गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गीत जो आपने सुना वो किसी के इंतजार का था, लेकिन किसी के बेहद प्यार का था। और वंदना, जब हम बात करते हैं गीतों की, तो गीत जो है वो शब्दों के साथ हमारी भावनाओं को भी उभारने का एक काम करते हैं। ये कहिए कि शब्द जो हैं वो हमारी भावनाओं को इस तरह से प्रकट कर देते हैं कि वो सिर्फ शब्द ना रहकर मन का मर्म बन जाते हैं।
2: और वो जो मन का मर्म शब्दों के हिसाब से, और कहते हैं जो लयबद्ध तरीके से जो चलता है गाने के संयोजन के रूप में, तो वो दिलों में बहुत बहुत ज़्यादा गहरी छाप छोड़ देता है। या फिर कहें कि उस जो कहते हैं ना लय में हम भी कई बार बह जाते हैं, और आँखों के कुछ जो कोने होते हैं वो कभी कभी गीले भी हो जाते हैं।
1: और ये जो नमी होती है ये याद दिलाती है उस मुलाकात की, जब वो जो गीत है उस मुलाकात पर सूट कर रहा होता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा। और मुलाकात तो सविता आज तुम बहुत खूबसूरत से गीतों से भी हमारी करवा रही हो, मुलाकात हम हमारे लिसनर से भी करेंगे।
1: जी बिल्कुल।
2: और मुलाकात तुमसे करने का इंतजार तो हमें भी रहता है ना।
1: बिल्कुल, दोस्ती की बात होती है वंदना, ये कि जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ हमें अच्छा लगता है, तो हम हमेशा उससे मिलने का एक बहाना ढूंढते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से एक मुलाकात हो ही जाए।
2: बिल्कुल, तो चलो आज खूबसूरत से मुलाकात के गीत भी सुनवाओ, और लिसनर से जो मुलाकात का जरिया संदेश पढ़ते हैं उनको भी इस गीत के बाद लेते चलेंगे, क्यों?
1: जी बिल्कुल। और जब किसी से पहली मुलाकात होती है तो मन में क्या भावनाएं होती हैं, उसे इस गीत ने बखूबी समझाया है।

0: यूं तो जिंदगी में हम हजारों लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन वंदना कुछ मुलाकातें बड़ी ही लंबी होती हैं और कुछ मुलाकातें इतनी छोटी सी होती हैं, लगता है कि मुलाकात बहुत छोटी है, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो उस इंसान या उस समय या उस लम्हे से जो वास्ता है वो बड़ा पुराना और बड़ा ही लंबा लगता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा। और खासकर तुमने ये जो गाना सुनाया ना कि पहली मुलाकात होगी, तो मेरे अंदर भी बड़ी मिक्स सी फीलिंग चल रही थी कि पहली मुलाकात होगी तो थोड़ा सा किसी किसी के कहते हैं पेट में गुड़गुड़ाहट, बटरफ्लाई होना, वो भी है वो इसकी जिसकी मुलाकात थोड़ी सी रोमानी हो, और किसी किसी की जिसकी पहली मुलाकात अपने बॉस से होनी है सविता, तो उसकी थोड़ी सी दुकधुकी भी बढ़ जाती होगी, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर मुलाकात का इनके एक अलग अंदाज है और अलग एहसास है।
1: हाँ, और भाई कोई मुलाकात दूरियों को पास लाने के लिए होती है, तो कोई मुलाकात थोड़ी सी जो खट्टी रिलेशनशिप होती है उसमें मिठास लाने के लिए होती है।
0: यानी कि मुलाकात का भी बड़ा अहम किरदार है हमारे जीवन में। किसी से पहली मुलाकात के बाद हमें बड़ी मोहब्बत हो जाती है और उसके साथ एक आत्मीयता फील होती है, और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे वो भारी बोझ सा बन गई हूँ हमारे लिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये कहना गलत होगा वंदना कि हर किसी से मिलके हमें अच्छा लगता है, कुछ मुलाकातें इतनी बोझिल हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि कभी कभार वो घड़ी आई ही क्यों, हमने उस व्यक्ति से मुलाकात की ही क्यों।
1: और वो मुलाकात नहीं, दिल कहता है, दिमाग कहता है कि ये तो मुकालात सी हो गई।
0: और अक्सर हम ऐसे मुलाकातों को भूलना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन जब राह में किसी अपने जानने वाले शख्स से मुलाकात हो जाए और वो दिल में भी उतर जाए तो भाई क्या बात है, और जब उसे शब्दों में पिरो दिया जाए तो वाकई गीत बड़े खूबसूरत बन जाते हैं। लेकिन इस गीत से पहले हम अपने उन साथियों से बात करना चाहेंगे जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला संदेश हम वंदना ये लेते हैं, ये हमें उत्तर प्रदेश से मिला है। लिखने वाले हैं राजकुमार वर्मा और इनका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा है। तो पूनम गगनेजा और अपने परिवार के साथ ये भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि जलालाबाद वेस्ट से हमें संदेशा भेजती हैं। ये हैं हमारे साथ अकरम हुसैन प्रिंस, जो कि हमें संदेशा भेजते हैं महसूल सीतामढ़ी से। संदेशे के साथ जुड़े हैं अनिल कुमार गवहानकर, जो हमें अपने पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं और कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से भी हमें संदेशा मिला है, ये राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मिला है, राजेश कुमार वर्मा जी का। तो ये है कमल बालूजा, जो बड़े दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं और इनका संदेशा भी हम कार्यक्रम में पहले बहुत शामिल करते थे, लेकिन शायद या तो आज हमने बड़े दिनों के बाद इनका नाम सुना है या फिर ये बड़े दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े होंगे, जो कि मजनू का टिल्ला से हमें संदेशा भेज रहे हैं। इसके बाद संदेशा हमारे पास आया है, ये राजकुमार डूडी जी जो हैं ये हमें हमेशा मैसेज करते हैं और ये हमें गाँव फरासी हिसार से संदेशा भेज रहे हैं। तो राधेश्याम वर्मा, इंद्रा शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सिरसा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे जो रेगुलर लिसनर हैं ये हमेशा संदेशा भेजते हैं, और कार्यक्रम में व्यक्ति के नाम के साथ जब संदेश आता है तो बड़ी उत्सुकता और बड़ी अच्छा सा किसी को भी महसूस होता है। ऐसा महसूस करवाने वाले हैं ये हमारे श्रोता जो हमें चंडीगढ़ सिटी से संदेशा भेज रहे हैं, बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जसबीर सिंह जी का भी हमारे पास ये संदेशा है, जो कह रहे हैं कि आप दोनों को ही सादर नमस्कार और बड़ा अच्छा लग रहा है आपका कार्यक्रम सुनकर, और ये कह रहे हैं कि ये हमें जींद हरियाणा से संदेशा भेज रहे हैं। लिखने वाले हैं जसबीर सिंह अरोड़ा और इनके साथ है पूरा परिवार। तो नारायण खर्चे जी ने भी हमें कई संदेश भेजे हैं, ये एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से संदेशा भेज रहे हैं, और वंदना देखिए आप ही के नगर से ये संदेशा है, वंदना नगर से, और पूरा खर्चे परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहा है। गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ पूरा परिवार है, ये हमें संदेशा कहाँ से भेज रहे हैं, ये हमें मोहाली पंजाब से संदेशा भेज रहे हैं, इनका भी पूरा परिवार कार्यक्रम को सुन रहा है। ये है महमूद कमर हमारे, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद कमर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो कि गुन्नौर से संदेशा भेज रहे हैं। साथ में ये आया है हमें गाव्या मल्होत्रा का एक संदेशा, जो कह रहे हैं कि मैडम जी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। टीडी मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से संदेशा भेज रहे हैं। तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और गीता रानी जाजोरिया हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पटेल नगर मलोट से संदेशा भेज रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ

संदेशे में कौन है, ये राजेश सावले पाटिल और ये भी पूरे परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं, छत्रपति संभाजी नगर से संदेशा इनका मिला है हमें। संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं, ये है महाराष्ट्र से संदेशा मिला है शंकर लाल जायसवाल का और ये भी पूरे जायसवाल परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, वड़िंगखेड़ा से संदेशा हमें मिला है पंजाब से मिंटू टॉमस का और इनके परिवार के सदस्य भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। फागुराम यादव का संदेशा हमें संबलपुर कांकनेर से संदेशा मिला है। संदेशे के साथ हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं हिमकेश्वर साहू जो कि भट्टापारा छत्तीसगढ़ से संदेशा भेज रहे हैं। संदेशा हमें मिला है, लिखने वाले हैं ये बुलढाणा से लिखकर भेजा है पी एस नवानकर और मलकापुर महाराष्ट्र से है सोपान तायड़े जो कि अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यक्रम हमें पसंद भी आ रहा है। पटियाला पंजाब से संदेशा मिला है सोमदत्त जी का और परिवार के साथ ये भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये रियासत हुसैन सिद्दीकी जी जो हैं हमें जसपुर उत्तराखंड से कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर घाटे भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं जो कि महाराष्ट्र से हमें संदेशा भेज रहे हैं और यह रोजी डी कैस्ट्रो ये हमें संदेशा भेज रहे हैं, कहाँ से इन्होंने हमें संदेशा भेजा है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। संदेश हमें बहुत सारे मिल चुके हैं और आप सभी के संदेशों को कार्यक्रम में शामिल करने की हम हमेशा ही कोशिश करते हैं। इंदिरा चौक दिल्ली से हमें ये है अजीम वक़ार माहिरा अजीम और निशा अजीम ये संदेशा भेज रहे हैं। तो पंचकुला से हमें संदेशा मिला है आशु चुंग का और अश्विनी चुंग जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। राजपाल शर्मा जी का हमें संदेशा मिला है तो ये है सोनम अकेडमी से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर सना जो कि हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये चमन पार्क दिल्ली से संदेशा भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, ये गीत हमें बहुत पसंद आता है। तो चलिए अब जब आपने कहा है हमने ये गीत लिया ही है कार्यक्रम में तो वंदना ज़रूर इस कार्यक्रम में इस गीत को भी शामिल करेंगे। किशन सपकाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमें शास्त्री नगर बीड शहर से संदेशा भेजते हैं और अपने सभी साथियों के साथ में पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं। वलीउल्लाह अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारे बहुत पुराने जो श्रोता हैं। इसके अलावा हमारे पास शमशुल जहां खमर का संदेशा आया है, ये हमें कहां से संदेशा भेज रहे हैं, ये जेल रोड बक्सर से संदेशा भेज रहे हैं। तो हमारे पास संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं बेताब रेडियो श्रोता संघ से, ये कहां से हमें संदेशा है, बिहार पटना से इन्होंने संदेशा भेजा है। वसीम अकरम साहब हैं और सालेहा खातून कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आप सभी के संदेशों को तो अभी तक हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिया लेकिन कुछ और संदेशों को लेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत की तरफ बढ़ लेते हैं।

0: जी हाँ, ज़िंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी मुलाकातें होती हैं कि जो ज़िंदगी को एक बहुत ही सुंदर सा एक आयाम दे देती हैं। कभी कभार हम सोचते हैं ना वंदना, कि कुछ अच्छी किताबें हम पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ अच्छा देखने को हमें मिलेगा, कुछ अच्छा ज्ञान मिलेगा, कुछ अच्छी बात मिलेगी, कुछ नए जज्बात मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं हमें जिनके साथ बड़ी अच्छे से मुलाकात रहती है। ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती है, जीवन भर के लिए बहुत कुछ सजो कर दी जाती है।
1: जिसे हम कई बार ये भी कह देते हैं सविता, कि ना आज हमारी उससे एक बहुत सार्थक सी मुलाकात रही। जीवन में कई बार कुछ पहलू या फिर कोई ऐसे मसले होते हैं जिसमें हम कशमकश में जूझ रहे होते हैं, और जब जूझ रहे होते हैं ना, तो यकीन मानिए कभी कभी हल नहीं निकलता, लगता है हम ही उसके ताने बाने को और ज़्यादा बुन दे रहे हैं, है ना।
0: और कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे जब किसी चीज़ का हल नहीं मिले, लेकिन किसी इंसान से बात की जाए, उससे मुलाकात की जाए, और उसके अनुभवों से जब अपनी बात को जोड़कर देखते हैं, तो लगता है कि शायद उस समस्या का समाधान हमें मिल गया।
1: और लगता है कि अरे इतना सरल था, और हम तो सोचे बैठे थे कि पता नहीं जो इसका हल है या फिर इसका निवारण है वो कैसे होगा।
0: कभी कभी छोटे छोटे से चीज़ों में हम इतने उलझ जाते हैं ना, कि किसी से बात करने की बजाय हमें वो गुत्थी खुद ही सुलझानी होती है। लेकिन कभी कभार मुलाकात और बात से जो गुत्थी होती है, वो इतनी आसानी से सुलझ जाती है कि समझ ही नहीं आता कि हम इसमें क्यों इतने डूबे हुए थे, क्यों इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन फिर भी जो मुलाकातें हैं ना, वो इंसान को बहुत कुछ देकर जाती हैं, कुछ सुनहरी यादें दे जाती हैं, कुछ बातें दे जाती हैं, कुछ नई सीख दे जाती है।
1: और कुछ मुलाकातें इंतज़ार भी दे जाती हैं, इंतज़ार उसका कि अब दोबारा से मुलाकात कब होगी।
0: लेकिन मुलाकात आपकी और हमारी तो होती रहेगी। फिलहाल तो गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: जी हाँ, बिछड़े तो नहीं, लेकिन कभी कभार मुलाकात जो है वो ऐसी हो जाती हैं कि दिल में उतर जाती हैं। फिलहाल तो वंदना, हम आगे बात को जारी रखें, उससे पहले हमारे जो ये साथी हैं
1: बिल्कुल
0: ना, ये भी अपनी मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनके
1: इंतजार कर
0: गीतों के
1: रहे
0: साथ साथ जब इनकी बात होती है, इनके नाम लिए जाते हैं, तो वो भी एक मुलाकात का जरिया बन जाते हैं। ये हमारे पास संदेशा मिला है हमें चंद्रनगर सहारनपुर से, कौशल्या जोशी और सुरेश जोशी का, पूरे जोशी परिवार के साथ ही हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हाँ जी, मजहर का हमें संदेशा मिला है, और ये संदेशा हमें मिला है मोहम्मद कमर का, जो कि कह रहे हैं कि वंदना जी और सविता जी, आप दोनों सखियों के जो प्रोग्राम पेश करने का जो अंदाज़ है ना, वो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है। बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: ऐसी बातों से हमारा मन भी जो है वो करता है कि अगली बार इससे भी बेहतर कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जाए। ये है हमारे साथ सुदर्शन मुखी जी, जो कि संदेशा भेज रहे हैं हमें शांति नगर सोनीपत से, संदेशे के साथ मेरठ कैंट से जुड़े हुए हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। संदेशा हमें नासिर शेख का मिला है, नवी हसन का मिला है, यासीन अंजान का मिला है, और ये कह रहे हैं किसी भी गीत में बस हमें शामिल कर लीजिएगा। संदेशे के साथ जुड़े हुए हमारे साथ ये हैं दिलावर खान, जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं रघुवीर नगर दिल्ली से ही, और दिलावर खान जी अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है वंदना, इन्होंने लिखा है, मुलाकातें सिर्फ चेहरों से नहीं दिलों से होती हैं, कुछ मुलाकातें उम्र भर की याद बन जाती हैं, तो कुछ पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
0: और यही
1: सही।
0: बात हम भी कह रहे हैं कि कुछ मुलाकातें हैं जो वो आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं, और कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हो जाती है कि वो जीवन भर के साथी बन जाते हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, ऐसा कहना है ये संभल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी जी का। संदेशे के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण कुमार पांडे, और कह रहे हैं कि कार्यक्रम हमें पसंद आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, और कोशिश करते हैं हम हर बार वंदना के अपने साथियों के लिए हम बेहतर से बेहतरीन गीत लेकर आएँ, और उससे भी बेहतर उसको पेश करें,
1: करें,
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: हमारा और आपका, हमारे ये जो साथ है ना, ये हमेशा ऐसे ही बना रहे और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।
1: और ये भी कोशिश हमारी रहती है सविता की मेरी, कि हमारा मनोबल तब बढ़ता है जब आप ऐसी कोई याद या फिर ऐसी कोई मुलाकात आपको याद आ जाती है और आप हमारे साथ संवाद स्थापित करते हैं, तो मज़ा कार्यक्रम का और भी बढ़ जाता है ना सविता।
0: जब हमारी बात के साथ आपकी बात मिल जाती है तो कार्यक्रम का अंदाज ही बदल जाता है।
1: जिसे कहते हैं ना कि दो तरफा संवाद जब हो जाता है, तो लगता है जो बात कही वो बात वहां पहुंच गई।
0: पहुंच गई, फिलहाल तो हम भी पहुंच गए हैं वंदना, बिल्कुल कार्यक्रम के उस पड़ाव पर जब हमें अपने साथियों से मुलाकात को यहीं पर थोड़ा विराम देना होगा, क्योंकि अगली मुलाकात के लिए हमें आपके साथ यहाँ पर जुदा होना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे और वंदना को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको छोड़े जा रहे हैं इस अंतिम गीत के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
3: अच्छा, गुड नाइट।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। मध्यरात्रि के 12 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत अधिकारी सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरोफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमरीकी आयातों पर लागू यह टैरिफ कल समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि इससे उन देशों को निशाना बनाना है जो जबरन श्रम से निपटने में विफल रहे हैं। चीन के हांगझोंग में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex, approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency or NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA, in a statement, said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts, chaired by Professor K. Radhakrishnan. Prime Minister Narendra Modi has thanked the country's youth for the response and suggestions following his video. In a social media post, Mr. Modi expressed gratitude to the youth for their overwhelming support. The video has now crossed more than 303 million views. It is the most viewed reel within its first 24 hours. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Delhi police has constituted a

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन, कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। आज के कार्यक्रम में बेहद ही उम्दा सुरीली आवाज़ के फनकार, अदाकार, गायक के बारे में गीत सुनते ही आप पहचान जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके एक गीत के साथ।

तो आपने सही पहचाना दोस्तों, आज के कार्यक्रम के जो फनकार हैं सुरों का सफरनामा में, वो हैं अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य 90 के दशक के एक दिग्गज भारतीय पार्श्व गायक हैं और उनका जन्म कानपुर में 30 अक्टूबर 1958 को हुआ। अभिजीत ने 1000 से अधिक फिल्मों में 6000 से अधिक गाने गाए हैं और उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, दिल को खींचती है अपनी तरफ, आकर्षण है उनकी आवाज़ में महसूस होता है, एक ध्यान लग जाता है उस तरफ और मन उनके गीत संगीत में खो जाता है, इतना सुरीला असर है उनकी गायन में।

सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ। आज के कलाकार, फनकार, गीतकार अभिजीत। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभिजीत ने 1000

से अधिक फिल्मों में 6,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1958 को कानपुर में हुआ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के लिए अभिजीत मुंबई आए, और उनका पहला जो कहें कि क्रश कहें या आकर्षण कहें या पहली प्राथमिकता गीत संगीत रही, और आर डी बर्मन ने उनको पहला ब्रेक दिया।

उम्मीद करते हैं आपको सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, क्योंकि आज के गायक हमने चुने हैं अभिजीत भट्टाचार्य जी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता धीरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य एक समाचार संपादक थे और उनकी माँ कमला भट्टाचार्य थी। वे अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से पूरी की और 1977 में कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से वाणिज्य बीकॉम में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। गायन बचपन से ही गायकी उनका शौक रही है। अभिजीत ने 1970 से स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे। किशोर कुमार को अभिजीत अपना आदर्श मानते हैं। अभिजीत ने 1981 में सीए की पढ़ाई के लिए मुंबई आए, लेकिन उनका झुकाव संगीत की तरफ ही रहा। मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन ने उन्हें फिल्म आनंद और आनंद 1984 के लिए पहला बड़ा ब्रेक दिया। इसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने वादा रहा सनम, धड़कन, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं और तुम दिल की धड़कन में जैसे कई सदाबहार हिट गाने गाए।

खोया मेरा दिल है, उनके गीत संगीत को सुनकर दिल खो सा जाता है, ऐसा असर है उनकी आवाज़ में, उनके सुरों में। अभिजीत की को फिल्म यस बॉस, जो कि 1997 में आई थी, के लोकप्रिय गीत मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके कई गानों को बीबीसी का सर्वकालिक शीर्षक 40 बॉलीवुड साउंडट्रैक की सूची में शामिल किया गया है। उनके निजी जीवन के बारे में बताएं तो अभिजीत भट्टाचार्य की पत्नी का नाम सुमति भट्टाचार्य है। उनके दो बेटे हैं, ध्रुव भट्टाचार्य और जय भट्टाचार्य।

तो साथियों, सुरों का सफ़रनामा आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ। आज के फनकार सुरों के सफ़रनामा में अभिजीत भट्टाचार्य जी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 90 के दशक में कुछ सुपरहिट फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए, जिनमें बादशाह, दिलवाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, रक्षक, जोश, धड़कन, जुदाई, राज, प्यार तो होना ही था, खूबसूरत, आप मुझे अच्छे लगने लगे, और राजा बाबू, अनाड़ी नंबर वन, जोरू का गुलाम, जोड़ी नंबर वन, मैं मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभिजीत जी ने हिंदी के अलावा अपनी मूल भाषा बंगाली सहित मराठी, नेपाली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी, उड़िया और अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं।

कि 90 के दशक में आई उनकी फिल्म में जैसे बागी, खिलाड़ी, ये दिल लगी, राजा बाबू, बादशाह और चलते चलते के गानों ने अभिजीत को घर घर में मशहूर कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें 1997 में फिल्म यस बॉस के सुपर हिट गाने मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के लिए

श्रोताओं, 90 के दशक में जब कुमार सानू और उदित नारायण का सिक्का चल रहा था, उस वक्त अभिजीत का वादा रहा सनम गाना सुपरहिट साबित हुआ था। मैं आपको बता दूं कि वादा रहा सनम अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म खिलाड़ी का गाना था। एक के बाद एक हिट गानों ने अभिजीत भट्टाचार्य को उस दौर के सबसे मशहूर गायकों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। अभिजीत भट्टाचार्य ने सबसे ज्यादा गाने शाहरुख खान की फिल्मों के लिए गाए हैं। उन्होंने शाहरुख खान की अंजाम फिल्म का गाना बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है गाया था, जो काफी हिट साबित हुआ। इसके बाद उन्हें शाहरुख खान की आवाज़ कहा जाने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब अभिजीत सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले गायक बने। श्रोताओं, अभिजीत भट्टाचार्य पर यह था आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रात्रि के 1 बजने को हैं, कुछ ही पल में अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीन ट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 1:10:45 हुए हैं। गीत सुनहरे कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपने दोस्त मोहन के साथ। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने गीत सुना फिल्म सौदागर से, और इस गीत में आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर सिंह की रही। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा गीत।

अभी आपने गीत सुना मैंने प्यार किया फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। और कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप सुनेंगे।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहन के साथ सुनहरे गीत। अभी जो गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म बेटा से, साथ में स्वर था विपिन सचदेवा का।

अभी आपने ये सुना कुमार सानू की आवाज में फिल्म दामिनी से। जब से तुमको देखा है सनम, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ। अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में एक बेहद ही खूबसूरत प्यारा सा गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में श्रोताओं, ये आखिरी गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह की आवाज में फिल्म सुहाग से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 2 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत और तंजानिया ने आपसी हित के विभिन्न

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। पेश है कार्यक्रम गीत बहार, नॉनस्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। तो आइए सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

और बगुलों के ले लो बाहें भर लो ना। बोलो तो सिलवाओ सब जेवर फूलों के खुशबू गह

0: अभी आप सुन रहे थे गीत बहार कार्यक्रम, यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 3 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अनुमति सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 में और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम गजल। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गजल बेला सुलाके की आवाज में।

फरीदा खानम की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। और लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की आवाज़ में ये गज़ल, दीवारों से मिलकर।

संदेश के बाद ही अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में गज़ल सोचा नहीं।

0: के साथ ही आज का ये गज़ल का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। रात्रि की 4:20 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं सिक्किल माला चंद्रा शेखर। आपने प्रस्तुत किया है राग कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध है। आपके साथ गटम पर संगत किया है बी पद्मनाभन ने और संगीत दिया है त्यागराजा ने।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन। कलाकार थे सिक्किल माला चंद्र शेखर। आपने प्रस्तुत किया राग कंबोजी जो आदि ताल में निबद्ध था। गडम्बर संगत के अभी पद्मनाभन ने और संगीत दिया त्यागराजा ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पाँच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रोहित प्रसन्ना का बांसुरी वादन। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे सुबह 6:10 पर। 6:40 पर चिंतन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास के विचार। 6:45 पर रामचरितमानस से पाठ सुनिएगा। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 127। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में समाचार भी प्रसारित किए जाएंगे।

7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हरी तीरथ सिंह के गाए शब्द गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा सुबह 7:30। पर सुनिएगा स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय रहेगा विश्व डूबने से बचाव दिवस 2026 पर विशेष। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर बी के राव और डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा, श्री रणवीर शर्मा और संचालन करेंगे डॉक्टर जवाहर जैन। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे शालिनी मित्र।

0: 9:15 पर धरती आकाश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 9:30 मिट्टी दी महक कार्यक्रम लेकर आएंगी जसपाल कौर। फिल्म संगीत आपकी पसंद का समय रहेगा सुबह 10:10। ग्यारह बजकर 10 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी आप सुन सकेंगे 11:30 बजे। आज आप सुनेंगे तन्वी भट्टाचार्य का गाया राग शुद्ध सारंग। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंगटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपये की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 18 जुलाई को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिक सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की बालिकाओं को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम का भार उठाकर सफलतापूर्वक ये पोडियम पर स्थान बनाया। नाइजीरिया के रिलुवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The cabinet meeting chaired by Prime

0: का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंडासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से 1 मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो, तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स और DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रोहित प्रसन्ना का बांसुरी वादन। आपने प्रस्तुत किया है राग नट भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में और द्रुत ख्याल 3 ताल में निबद्ध है।